जित मुख नाम न उचरै उन नाम रस खाय नानके वह जानी है जित मुख सुखा पाए महला पहला पण जमिया पण निमिया पण वंगन गया हो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहो पंड बुआ पंड पालिया पंड

0: साहिब से ती हुकुम चल कई बने अरदास
1: कूड़ कमाने कूड़ा हो गए नानक सिफत विकास महला दूजा एक नहीं वड़ा रूसो ने हो
0: महला दूजा नार यान दोस्ती वड़ा रूसो ने हो
1: पानी अंदर लीक जो तिसदा था न थे हो महला दूजा
0: होए याना करे।

सज्जन दे हथ बां असाडी कीकण आखा छड व्याड़िया। जगीर सिंह दे गाए शाह हुसैन दे इस कलाम तो बाद जसबीर जस्सी दी आवाज विच सुल्तान बाहू पेश है।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ ते खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु हिन तरह आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेशा भगत कराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ अॼु प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी ख़ासि ख़ासि ख़बरूं यानी कि न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर अचो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

आयुर्वेद भारतीय मेडिसिन सिस्टम जो हज़ारे साल पुरानो रवायती तरीक़ो आहे, जंहिंजो ध्यानु हूंदो आहे जिस्म, ज़हन ऐं रूहानी ताक़त ते, तंहिं मुंहिंजे तवाज़न रखणु ऐं इहो सॼो तवाज़न खाद पीत यानी कि डाइट, हर्बल मेडिसिन दवाउनि ऐं ज़िंदगी बसर करण जे दर्जे में तब्दीली आणींदे कयो वेंदो आहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घणनि ई मौक़नि ते चयो आहे त आयुर्वेदिक हिकु मुकमल सिरिश्तो आहे, होलिस्टिक सिस्टम आहे, ऐं सरकार इन लाइ आयुष वज़रात पिणु बरपा कई आहे, जेका रवायती दवा जे तरीक़े ते ध्यानु ॾेई रही आहे। इन में शुमार आहे सिद्धा, यूनानी, योग ऐं होम्योपैथी। सिज बुनियाद अच खे अहम हिमायत ॾींदे, पुख़्ताई ॾींदे प्रधानमंत्री घणनि ई रवायती सिहत सेवा इदारनि जो महूरत कयो आहे ऐं इन्हनि जो बुनियादी पथर पिणु विधो आहे। भारत जे पहिरें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जे फेस टू जो पिणु महूरत कयो वियो। प्रधानमंत्री यू विन पोर्टल जो पिणु महूरत कयो आहे, जंहिंमें टुकनि जे कार्रवाई खे डिजिटलाइज़ कयो आहे। इन खां अलावा जेके पेट सां औरतूं आहिनि ऐं नंढा ॿार आहिनि, तिन खे फ़ाइदो पवंदो। डिजिटलाइजेशन सां सिहत सेवा बहितर थी वेंदी। श्री मोदी ॿिनि मर्कज़ी खोजना इदारनि जो, जेके योग ऐं नेचुरोपैथी में कमु कंदा, से ओडिशा जे खोर्धा ऐं छत्तीसगढ़ जे रायपुर में आहिनि, तिन जो फाउंडेशन स्टोन पिणु विधो आहे। हुन गुजरात जे अहमदाबाद में निपर NIPR जे चैन सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो पिणु बुनियादी पायो वेंदो आहे। ॿियो आहे निपर तेलंगाना जे हैदराबाद में, तंहिंमें बल्क ड्रग्स ते कमु कयो वेंदो। टियों आहे आसाम जे गुवाहाटी में, जंहिंमें फाइटो फार्मास्यूटिकल्स ते कमु कयो वेंदो। ऐं चोथों आहे पंजाब जे मोहाली में, जंहिं ते एंटी बैक्टेरियल ऐं एंटी वायरल ड्रग्स ते कमु कयो वेंदो। प्रधानमंत्री चार आयुष सेंटर फॉर एक्सलेंस जो पिणु महूरत कयो आहे। CN जिन जा नाला आहिनि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डायबिटीज़ ऐं मेटाबोलिज़म डिसऑडर्स एट सो आहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ॿियो जेको आहे सो आहे सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन सस्टेनेबल आयुष फॉर एडवांस टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन स्टार्टअप सपोर्ट एंड नेट ज़ीरो सस्टेनेबल सोल्यूशन सो आहे IIT दिल्ली में। टियों आहे दुर्ग में ऐं चोथों आहे नई दिल्ली JNU में। भारत में मेक इन इंडिया खे वॾी हिमायत ॾींदे, ख़ासि करे सूबे सिहत खेत्र में प्रधानमंत्री पंजनि कमनि जो महूरत कयो आहे, जेके शुरू कया विया आहिनि PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तहत। तंहिंमें सिहत जा औज़ार ऐं थोक में दवाऊं गुजरात जे वापी में तयारु कई वेंदियूं, हैदराबाद जेको तेलंगाना में उते थी वेंदियूं, कर्नाटका जे बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश जे काकीनाड़ा में, तंहिंखां अलावा हिमाचल प्रदेश जे नालागढ़ में। इहा यूनिट ऊचे हाई एंड मेडिकल जा सिहत जा औज़ार मैन्युफैक्चर कंदा, तंहिंमें अची थो वञे बॉडी इम्प्लांट्स ऐं क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स। तंहिंखां अलावा ॿाहिरां थोक में दवाऊं पिणु आमद कई वेंदियूं। प्रधानमंत्री पूरे मुल्क भर में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान पिणु शुरू कयो आहे, जंहिंसां शहरनि मंझि सिहत बाबति सुजाॻी ईंदी। इन खां अलावा माहौल में ईंदड़ तब्दीली ऐं इंसाननि जी सिहत सां वाबस्त हर सूबे ऐं हर मर्कज़ी इलाइक़े में एक्शन प्लान पिणु शुरू कयो आहे, जंहिंसां हिकमत अमली तयारु कई वेंदी, ख़ासि करे मौसम खे हथी ॾियण में।

प्रधानमंत्री चाहे तो गुजरे 12 सालों दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिन जो तादाद 96 करे 22 ते पहुंची वियो आहे। भारत जदीद साइंस जे सिरिश्ते खे अख़्तियार कयो आहे, पर पोइ बि हज़ारे सालनि जे क़दीम आयुर्वेद सिद्ध योग हर्ब्स ऐं सुपर फूड जे रिवायत खे कोन विसारियो आहे। भारत हमेशह ई होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम खे हिमायत ॾींदो रहियो आहे, जंहिंसां वेलनेस ज़हन, जिस्म ऐं आत्मा जी वेलनेस बहितर थिए थी। तव्हां तफ़सीरु ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सजन तोखे खबर कड़ी।

उमर काजी पंहिंजे आर्टिकल कारोकारी ऐं मज़लूम नारी जेको सिंध एक्सप्रेस में शायदि आहे तंहिंमें अॻिते लिखनि था कि कुझु ॾींहं अदालत अॻु में इन निज़ाम ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॿुधाए पर फ़ैसिलो ॿुधाइण सां कुझु न थींदो आहे उन ते अमल पिण थियणु घुर्जे ऐं इन निज़ाम खे ख़ात्मे सां ई तब्दीली ईंदी। सिंध में जिरगा कराए नियाणियुनि सां क़तल जूं कारवायूं थींदियूं रहियूं आहिनि। इन निज़ाम ख़िलाफ़ घणा ई फ़ैसिला अची चुका आहिनि। जिरगनि ते पाबंदियूं विझण जे बावजूद बि का बि सख़्तु कारवाई न थियण सबबि अॼु ॾींहुं सूदो सिंध में नियाणियुनि जो क़तलेआम रुकजी कोन सघियो आहे ऐं सिंध में कारे इल्ज़ाम हणी कंहिं बि नारी खे नाह क़तल करणु ईअं महसूस कयो वेंदो आहे त ॼण इहो क़तल जाइज़ आहे। कारे इल्ज़ाम हेठि थींदड़ क़तले वारे केसनि में दहशतगर्दी जा कलम लॻाइण न लॻण सबबि जवाबदार कुझु ई वक़्त जे अंदरि आज़ाद थी वेंदा आहिनि। इहो ई कारण आहे जो इहा गंदी पुराणी समाज जी रीत ऐं रस्म सिंध में लागू आहे ऐं हिन खे गैर जो नालो ॾिनो वियो आहे। हिन खे हेठि किरियल नक खे मथे खणी अचण जो नालो ॾिनो वियो आहे। उहो नकु जेको हिन में त हूंदो ई कोन्हे तंहिंखे ज़ोरी मथे खणी अचण जो नालो ॾेई नियाणियुनि जो क़तलेआम कयो वञे। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में उमर कादी जो शाया थियल आर्टिकल ॿुधी रहिया कि कीअं न सिंध में बेगुनाह औरतुनि खे कारोकारी जो इल्ज़ाम हणी क़तलेआम कयो पियो वञे।

हींअर पेशंट ख़ासि ख़ासि ख़बरूं ऑपरेशन सिंदूर जे पहिरीं एनिवर्सरी ते क़ौम मुल्क जे बहादुर सिपाहियुनि खे संदन बहादुरी ऐं क़ुर्बानी लाइ सलाम ॾिनो। सदर, नायब सदर ऐं प्रधानमंत्री इन कार्रवाई खे दहशत ख़िलाफ़ भारत जे मुहकम कार्रवाई करे कोठियो आहे। वियतनाम जो सदर लोताम ज़ोर ॾींदे चयो त संदसि मुल्क ऐं भारत गॾिजी करे आलमी सप्लाई चेन्स में हिकु मुख्य रोल अदा कंदा। WHO पकड़ ॾिनी आहे त हेंटा वायरस सो हिक क्रूज शिप में निकितो आहे ऐं चयो आहे त इन सां अवाम जी सिहत खे तमामु ई घटि ख़तरो आहे। ऐं आर्चरी में भारतीय औरतुनि जी टीम शांघाई में साउथ कोरिया खे बीट कंदे मुल्क लाइ पहिरियों बिल्लो वर्ल्ड कप स्टेज में खटियो आहे।

तव्हां खां शिवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी की भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे ते। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स

0: So very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 7:10। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे करण किशोर मिश्रा से भजन।

श्रोताओं, अभी आप संगीतिका कार्यक्रम में करण किशोर मिश्रा से भजन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:30:29 और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

श्रोताओं, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं कुसुम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कहते हैं दोस्तों, हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत ही सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में।

श्रोताओं, अभी आप कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज में सुन रहे थे फिल्म 1942 और लव स्टोरी से ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, ना रहो खुद उदास और ना किसी को उदास रहने दो। जी हां, संगीत में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि उदासी क्षण भर में चली जाती है, और इसीलिए हमें संगीत सुनना बहुत पसंद होता है।

श्रोताओं, अभी आप किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कल आज और कल से ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं सभी कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। दोस्तों, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर में वो मोती हैं दोस्तों जिनसे इंसान की पहचान होती है। जी हाँ, हमारे बोल हमारे शब्द ही है ना जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। हमारे शब्द जो होते हैं वो सुकून भी दे जाते हैं और दूसरों को हर्ट भी कर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो बोल हैं, वो दूसरों को हीलिंग का ही काम करें, उससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे या दिल ना टूटे।

श्रोताओं, अभी आप मोहम्मद रफी की आवाज में प्यारा सा गीत सुन रहे थे। फिल्म थी आप आए बाहर आए। दोस्तों, जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पहचान बनाना है, किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना। सबके पथ सबके रास्ते अलग अलग हैं और हमें जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। किसी का अनुसरण नहीं करना, क्योंकि सबकी अपनी जीवन की दिशा और दशा होती है, उसी के मुताबिक हमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। फिल्म है, बाजीगर और कलाकार है पंकज उदास।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना, इंसान की जो सोच होती है ना दोस्तों, उसे बादशाह बना सकती है। जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हों। जिंदगी में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। किसी इंसान की असली ताकत उसकी डिग्री नहीं, उसका आत्मविश्वास, मेहनत और सोच होती है। अगर सोच ऊंची हो तो छोटा इंसान भी बड़ी पहचान बना जाता है। जिसकी सोच बड़ी होती है दोस्तों, वो हर मुश्किल को अवसर बना लेता है। डिग्री सिर्फ कागज का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मविश्वास, कर्म और सकारात्मक सोच इंसान को असली बादशाह बनाते हैं। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ी मंजिल तक ले जाती है। सफलता पहले इंसान की सोच में जन्म लेती है दोस्तों, फिर उसकी मेहनत उसे हकीकत बनाती है। यदि हम अच्छा सोचेंगे, हमारी जो सोच होगी सकारात्मक होगी, तो जरूर हमें मंजिल मिलेगी। और जिस इंसान के पास सीखने की शक्ति होती है ना दोस्तों, हार न मानने का जज्बा और खुद पर विश्वास होता है, उसे दुनिया की कोई भी कमी नहीं रोक सकती।

दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वो है समय। समय इंसान को सब सिखा देता है, बड़ी बड़ी किताबें भी जो नहीं सिखा पाती। कभी खुशी देकर, कभी संघर्ष देकर, कभी इंतजार करवाकर समय हर पल इंसान को मजबूत और समझदार बनाता है। और दोस्तों, ये समय ही है जो हमें कह रहा है कि और नहीं, बस हमारे कार्यक्रम का समय यही संपन्न होने वाला है, ये भी इशारा दे रहा है। तो अपनी होस्ट और दोस्त कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही देरों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु

0: क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: India and Vietnam offer something important.
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन

0: सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग। सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengal.

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। यह बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतादिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी, जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे, क्योंकि यह तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या न देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टी ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का यह फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एमके स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तक

0: बिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफद भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसानायकी की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की कयादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी इख्तिरा तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तावुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हममनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इख्तिराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तावुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तिराई मराकज से मुतालिक तावुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजिशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तिराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का यह कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलों पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजे है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।

0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में यह कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौमे फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माही, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बैनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल किये। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 8:45 और 16 सेकंड। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिस्र भैरवी और राग दादरा राग मिस्र पीलू।

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में सुन रहे थे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिश्र भैरवी और दादरा राग मिश्र पीलू। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन रामानुज सिंह सुंदरम।
1: विश्व के इतिहास में अनेक महापुरुषों ने अपने अपने अनेक महान कार्यों से अपने इतिहास रचे हैं। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह जैसे अनमोल विचार प्रदान

दान किए हैं और शांति का अद्भुत मार्ग दिखाया है। उनके संपूर्ण जीवन का संदेश था प्रेम, शांति, अहिंसा, सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वाभिमान। वे सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक थे। उनके विचार सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, प्रेम, साहस और आत्मिक नैतिक बल पर केंद्रित है। उनकी सादगी और सत्याग्रह द्वारा अहिंसक विरोध उन्हें विश्व के अन्य नेताओं से अलग करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। उन्होंने आगे कहा कि उनके साहसी विचार युगों के लिए प्रेरणादायक हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। महात्मा गांधी का प्रभाव केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि तत्कालीन विश्व राजनीति पर उनका गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और हिंसा के विरुद्ध संघर्ष के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का नया अनमोल विचार विश्व को दिया, औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा। महात्मा गांधी का औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विश्व के अनेक देशों की स्वतंत्रता के मार्ग प्रशस्त किए। उनके विचारों का प्रभाव वियतनाम में हो ची मिन्ह पर भी पड़ा। एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक देशों में मुक्ति संग्राम के आंदोलन जोर पकड़ने लगे। उन्होंने आत्मबल के द्वारा निहत्थे राष्ट्रों में जन जागरण के प्रयास किए और साबित किया कि एक निहत्था राष्ट्र भी अपने आत्मबल के द्वारा बड़े साम्राज्य को झुका सकता है। वैश्विक अहिंसा और शांति का संदेश। वैश्विक शांति आंदोलन युद्धों को समाप्त करने, हिंसा कम करने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। ये आंदोलन अहिंसक प्रदर्शनों, परमाणु निरस्त्रीकरण और गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से संघर्षों को सुलझाते हैं। इसमें नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जो संघर्ष की रोकथाम, मध्यस्थता और परमाणु विरोधी अभियानों पर काम करते हैं। महात्मा गांधी के वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेश से अहिंसक विरोध, शांति सभाएं, कूटनीति, जागरूकता अभियान और शांति प्रिय राजनेताओं के समर्थन से विश्व को एक नई दिशा मिली। आज ये आंदोलन न केवल युद्ध रोकते हैं बल्कि मानव अधिकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जमीनी स्तर पर शांति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में ये आंदोलन जलवायु परिवर्तन, महामारी और सामाजिक असंतोष जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेशों से विश्व के देशों में विश्वास और अभय के वातावरण बने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जिसका प्रभाव बाद में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं पर पड़ा। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष 1912 से 1994 तक एक लंबा और हिंसक अहिंसक मिश्रित आंदोलन था, जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला और ANC ने किया। गौर शासकों की नस्लीय भेदभाव की नीतियों के विरुद्ध जनता ने सत्याग्रह, हड़ताल, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से 1994 में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध खूब संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें काफी वक्त जेल में व्यतीत करने पड़े। स्मरणीय है कि नेशनल पार्टी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर
काले और गोरे लोगों को

0: अलग करने के लिए कठोर कानून बनाए थे, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को अलग करना, मिश्रित विवाह पर रोक और काले लोगों को गरीब इलाकों में रहने के लिए मजबूर करना शामिल था। अमेरिका में अधिकार आंदोलन का प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने गांधी जी की तकनीकों को अपनाकर नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1950 और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संघर्ष था। इसका उद्देश्य संस्थागत नस्लवाद, कानूनी अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करने जैसी कुरीतियों को समाप्त कर अश्वेत नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन ने अमेरिका को बदल दिया। आंदोलन के कारण शिक्षा में कानूनी अलगाव को समाप्त करके सार्वजनिक स्कूलों का पुनर्गठन किया गया और दक्षिणी अश्वेतों को भी मताधिकार प्राप्त हुए। साम्राज्यवाद पर नैतिक प्रभाव। गांधी जी का आंदोलन अहिंसक, जन केंद्रित और नैतिक संघर्ष था। उन्होंने सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर साम्राज्य की सत्ता और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ थे। भारत में 1930 में डांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक जन आंदोलनों से अंग्रेजी साम्राज्य की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। यहाँ तक कि ब्रिटिश जनता के मन में भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति पैदा हुई। महात्मा गांधी ने राजनीति की दिशा बदली। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ने के सार्थक कार्य किए। उनका मानना था कि धर्म के बिना राजनीति विनाशकारी होती है और धर्म के साथ राजनीति सृजनात्मक होती है। गांधी जी के विचारों के गहरे प्रभाव पश्चिमी देशों के विचारकों और दार्शनिकों पर पड़े। वे उन्हें आध्यात्मिक नायक के रूप में देखने लगे। दुनिया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों से जूझ रही थी। आपस में अविश्वास का माहौल था, भय का वातावरण बना हुआ था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने नैतिक राजनीति का माहौल पैदा कर सकारात्मक संदेश दिया। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रभाव अप्रतिम है। समूचे इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य के संबंधों में इतनी शिद्दत के साथ सत्य, अहिंसा, न्याय, मनुष्य के भाईचारे जैसे बुनियादी नैतिक मूल्यों को लागू करने अथवा उन्हें मान्यता दिलाने वाला कोई और उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के माध्यम से विश्व राजनीति को एक नई राह दिखाई। न्याय और नैतिकता के आधार पर राजनीतिक सत्ता की वकालत की। सन 1947-48 तक महात्मा गांधी एक भारतीय नेता से बढ़कर एक वैश्विक नैतिक मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके विचारों की गूंज से विश्व के अनेक राष्ट्रों में नवजागरण के स्वर स्पंदित हुए। विश्व की राजनीति में एक नवीन सार्थक आयाम निश्चित हुए और मानवता के प्रति सत्ता और राजनीति में नए दृष्टिकोण उदय हुए।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन रामानुज सिंह सुंदरम।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा अभी आपने सुनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: काम ताम तेरा, तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। शेर मुलाहजा फरमाइए कि तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है, तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है, जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है, जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। मुस्लिम हों या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों, मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो, दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो, दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में, अर्ज किया है कि फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में, जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में, जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। आखिरी शेर है हमद का कि हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा, तुझसा नहीं है कोई यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूं, मतलब मुलाहजा फरमाइए।
1: रोशन रोशन आपकी सीरत,

उजला उजला आपका नाम, रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला

मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब फैजान हुआ। मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे

का नाम। आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पयंबर रुश्द हुदा के तारे हैं, सारे ही

0: नाम।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुबुगाही। हम दोबारी ताला और नाते रसूल अभी अपनी सुनी पेश कर रहे थे डॉक्टर ताबिश मेहदी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
2: And let's get to some history now, Nikhil.
3: Ji.
2: In 1360, the Treaty of Brittany was signed between England and France.
3: और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1541 में आज के दिन ही हर्नांडो डी सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की थी और वे ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ताओं में से एक थे। वर्ष 1962 में आज के दिन ही रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी और इससे पहले वर्ष 1933 में आज के दिन ही महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन का उपवास शुरू किया था। श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2002 में कराची में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करके स्वदेश वापसी की थी और वर्ष 2004 में आज के दिन ही श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट हासिल करके सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वासुदेव चापेकर की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के छोटे भाई थे, जिन्हें सामूहिक रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध किया और आपको बता दें कि 1897 में पुणे में प्लेग फैलने के दौरान ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार से क्रोधित होकर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड को मार दिया था। वासुदेव चापेकर ने भी अपने भाइयों का पूरा सहयोग किया और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आपको बता दें कि जिया फरीदुद्दीन डागर को ध्रुपद परंपरा का एक प्रमुख कलाकार माना जाता है और वे ऐसे घराने से संबंधित रहे जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपराओं को जीवंत करके रखा हुआ है। और आपको बता दें कि 19 पीढ़ियों तक लगातार ध्रुपद गायकी को इस परिवार ने बढ़ाया है। आइए सुनते हैं।

0: और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है भाई बाल मुकुंद की। वे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी थे। देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आपको बता दें कि भाई बाल मुकुंद का नाम विशेष रूप से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है। 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में उन्हें सहभागी माना गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई और आज के दिन 1915 में उन्हें फांसी दी गई थी। श्रोताओं को बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है मास्टर अमीर चंद की। वे स्वाधीनता सेनानी थे और लाला हरदयाल के संपर्क से क्रांतिकारी आंदोलन में आए और फिर रास बिहारी बोस के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। अमीर चंद के मन में देशभक्ति की मान्यता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के बाजार में अपना स्वदेशी स्टोर खोला था और वहां देशभक्तों की तस्वीरें तथा क्रांतिकारी साहित्य बेचा करते थे। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्यों का संयोजन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में किया, जिसकी वजह से उन पर एक षड्यंत्र का केस चला और अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर उन्हें 8 मई को फांसी की सजा दी थी। और आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे और साथ ही एक जाने माने मार्क्सवादी दार्शनिक भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन में भौतिकवादी संस्कृति की गवेषणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो भारत और दुनिया के लोग, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, प्रकृति पदार्थ और परमाणु तथा आधुनिक विश्व का इतिहास जैसी पुस्तकें हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं। श्रोताओं आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देशपांडे की। वे मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और समाज शिक्षा विशेषज्ञ विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि के प्रसिद्ध कविता संग्रह की हम बात करते हैं तो फलवात, भग्नभूर्ति, पीरदेवा, सांगाती, दशपदी जैसी रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि 1977 में दशपदी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही जयंती है स्वामी चिन्मया नंद की। वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। और आपको बता दें कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने कई सारे कार्यों की शुरुआत की और शुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना भी की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीति कथियागी से खबरें सुनिए। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तो लैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी जरई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टीएलएस जाब्ते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएज के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी की लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। हलफबरदारी की तकरीब 9 मई को हफ्ते के रोज होगी, इसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता

गया है। इधर आज वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या न देने के मामले पर गौर किया जाएगा। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशावराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइके बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमरा 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफद भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दसनायकी की दावत पर कर रही हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की कयादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निजाम में तआवुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब से दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तिराई इको निजाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तिराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाते इश्तराक का भी जायजा लिया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ने बुलंदी पर पहुंची है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉ एमजे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मेयारे जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने, आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजिशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़रई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डेलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तिराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है।
خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی. اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹن برینز شامل تھے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ

अभी आप सुन रहे थे अकवाले जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज के प्रोग्राम में सुनिए सलीम अहमद की आवाज में एहसान दानिश और जिगर मुरादाबादी का कलाम। उसके बाद पुष्पा हंस से आप सुनेंगे दाग दहलवी और बेकल उत्साही का कलाम।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइड।
1: कंट्री वाइड
2: नमस्कार। कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी है, इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
3: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती है, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

0: 5.0 का जो ऐलान किया है उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो हैं, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती हैं तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है, और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है, और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा
1: जी, और एक बहुत बड़ी राहत होगी खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
0: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो 1-7 साल की जो लोन दी जाएगी इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है, और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं 7 करोड़ कंपनियां जो हैं उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल के मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी, इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा
1: जी।
0: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है खजाने में कितनी बहुत बड़े क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा, और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा 2 साल का मॉरेटोरियम जो विमानन कंपनी की होगी या की कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है। तो मैं समझता हूँ कितने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके
1: जी। आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य, जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाए, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
0: देखिए मॉरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है, जैसे कि एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है।

0: उसके अंदर दो साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है, पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम, उसका मतलब 1 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं। जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए आप, उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं, क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट्स बंद हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है।
0: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी ATF की प्राइस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बढ़ी है और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कहते हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मोरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है। पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खासतौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है उससे जुड़े तमाम सेक्टर है जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो है वो छोटी लघु उद्योग है, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स है वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूं कि विमानन कंपनियों ने

0: अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई है, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतरदेशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा, पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना, उसमें मैं समझता हूं कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये दो साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, दो महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मोरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को, और विमानन कंपनियों को 2 साल का मोरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को, और कंपनी को 5 साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1,500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूं कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चल सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया,
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से ये नगमा। अब सुनिए मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्नडे और साथियों को फिल्म है हकीकत।

मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी और मन्ना डे की हैं। फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

मोहम्मद रफी के साथ साथी आप सुन रहे थे फिल्म थी आस का पंछी। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। अगली पेशकश मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से है। आवाज है लता मंगेशकर की।

0: पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों।
1: अल हिलाल फिल्म के कव्वाली आप सुन रहे थे इस्माइल आजाद और साथियों की आवाजों में। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में है। फिल्म है जब से तुम्हें देखा है।

इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब है आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। लीजिए अब सुनिए जनाब मोतीलाल खेमू का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान है बेजुबान।

0: पेड़ से फल उतरते ही उसके दाम आसमान से बातें करने लगते हैं। मुनाफा ज्यादा कमाने की होड़ लगी है। गर्म इलाके में पैदा होने वाला फल सर्द इलाके तक आते आते 8 गुना हो जाता है। तौबा तौबा, क्या वक्त आ गया है।
1: ले बाबूजी, बच्चे भैया बच्चे, ए ठेले वाले भैया, भैया बच्चे बच्चे बच्चे बच्चे, भैया अड्डा भैया अड्डा, ए बीबी जी बच्चे, हाँ चल चल, ए संतरे वाले भैया,
2: लीजिए लीजिए नागपुर का संतरा, मीठा रस भरा संतरा, खटाई जरा भी नहीं है हजूर।
0: अरे नहीं भाई, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए।
2: तो ये लीजिए, पहाड़ों का सबसे अच्छा फल मशहूर अंबरी सेब, देखिए साहब कितना लाल है और क्या खुशबू है हजूर, तबीयत खुश हो जाएगी। लगता है परदेसी बाबू हो, पहाड़ों में सैर सपाटे को आए होंगे। टांगे से आए क्या?
0: हाँ टांगे से।
2: अजी साहब, अब टांगे कहाँ रहे, अब तो इक्का दुक्का ही टांगे बचे हैं। फिर भी टांगे में घूमिएगा जरूर, क्या शाही सवारी है
0: भाई। मुझे संतरा चाहिए।
2: अजी हजूर लीजिए ना, इसमें से दूं या ये दूं या वो दूं, हजूर मेरी मानिए तो ये वाला लीजिए, क्या रस भरा संतरा है।
0: दो भाई जो अच्छा हो दो।
2: हाँ, कितने दर्जन दूं बाबूजी?
0: दर्जन भाई? सिर्फ दो, दो संतरे
2: बस। हाँ, हाँ। तो ये लीजिए हजूर।
0: हाँ शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। चल भाई श्रीवास्तव, कहीं बैठ कर सुस्ता ले। वाह वाह, क्या पार्क है, छिलका नम है। चलो वहां बैठकर सूरज ढलने का नजारा देखते हैं। पहाड़ों में सूरज ढलने का समय कितना हसीन होता है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए उस बेंच पर बैठता हूं। हाँ पर ये छिलका, छिलका जी तो नहीं करता कि पार्क में भेज दू। हाँ चलो, अपने ओवरकोट की जेब में रखता हूं। ये रही बेंच। बहुत पुरानी लगती है। खैर मेरा क्या, जरा एक भमक मुंह में डाल लो। ओहो, इसमें तो कोई रस नहीं, बिल्कुल बेमजा। कह रहा था बड़ा रस भरा संतरा है, इसमें तो कोई रस ही नहीं है। ठीक, अरे अंदर बाहर एक जैसा बेमजा। वैसे बेमजा में भी एक मजा है। भाई ये तो कप कप इसी होने लगी। अच्छा किया जो गर्म कपड़े पहन रखे हैं। ये छिलके जेब में कब तक रखूं? यहां जूठन और छिलका समेटने वाले कोई पेटी ही नहीं दिखते। अरे क्यों ना इस खाली गमले को इस्तेमाल में लाया जाए। ओहो हो हो हो हो, लगता है यहाँ पर किसी श्रीमान का मुंडन हुआ है। शायद कोई आ रहा है, जल्दी से संतरा निकल डालता हूँ।
3: हुजूर मैं बड़ी उलझन में फंसा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
0: फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
3: आप मुझे इस दरखास्त पर लिखे इन अंग्रेजी के लफ्जों का मानी समझाएंगे। लगता है आप कुछ खा रहे हैं, शायद सोच कर जवाब देंगे।
0: अरे भाई देखते नहीं, मैं संतरा खा रहा हूँ।
3: जी जी, वो हमारा सेठ भी अपनी बीवी को संतरे का रस पिलाया करता है, कहता है उसके जिगर में गर्मी है।
0: अरे भाई मैं रस नहीं पी रहा, संतरा खा रहा हूँ।
3: जी क्या आप भी बीमार हैं?
0: अरे नहीं तो, अच्छा खासा हूँ, मुझे श्रीवास्तव कहते हैं। और आप?
3: मुझे आंसू कहते हैं। आदमियों के नाम कितने मिलते जुलते होते हैं। आप अपनी दरखास्त पर भी यही नाम लिखते हैं?
0: टूरिस्ट बस की वापसी टिकट पर मेरा यही नाम लिखा है।
3: तो असली नाम क्या है?
0: भाई नाम वापसी टिकट का ही होता है। जब टिकट का कोई मतलब नहीं रहता तो नाम की अहमियत खत्म हो जाती है।
3: आप बहुत अच्छे बाबू हैं।
0: अब मैं बाबू नहीं, 6 साल से पेंशन पा रहा हूँ।
3: तो मैं आपको क्या कहूँ,
0: मेरा टिकटिया नाम।
3: तो जनाब श्रीवास्तव साहब, क्या आप मेरी इस दरखास्त पर लिखे इन अल्फाज को पढ़ेंगे?
0: इन लफ्जों को?
3: यही अल्फाज जो अंग्रेजी में लिखे हैं।
0: वो बात यह है कि मुझे बगैर चश्मे के दिखता नहीं, अंधेरा होने को है। वैसे भी मैंने अंग्रेजी बचपन में पढ़ी थी।
3: मेरे अब्बा ने मुझे बचपन में उर्दू सिखाई थी, उन्हें फारसी के बहुत से अशार जबानी याद थे। ये दरखास्त मैंने खुद ही लिखी है।
0: जी मैं भी अपनी दरखास्त खुद ही लिखता हूँ हिंदी में। अब उम्र का हो चुका हूँ।
3: साहब इस पर ये अंग्रेजी में क्या लिखा है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक दास्तान जुड़ी है। आप कहें तो आपका चश्मा उठाकर ले आऊं?
0: वो तो होटल के कमरे में पड़ा है।
3: होटल दूर है क्या?
0: जी हाँ, नदी के उस पार। क्या तुम इसको कल नहीं पढ़वा सकते?
3: हुजूर, मैं बहुत ही बेचैन हूँ, रात को सोऊंगा कैसे? उस रात भी सोया नहीं था।
0: किस रात?
3: जिस रात वो मेरा मकान गिराने आए थे।
0: क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन?
3: जी जी, ऐसी ही जुबान में मेरी दरखास्त पर कुछ लिखा गया है। आज मैं फिर बेचैन हूँ।
0: पर क्यों?
3: हुआ यूं साहब,
4: ये मकान तुम्हारा है?
3: साहब जिंदगी में आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा।
4: तो क्या ये मकान तुम्हारा है?
3: मैं यहाँ रहता हूँ।
4: तो मालिक कौन है?
3: मेरे बाप ने बनवाया था, इसी में पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ और यही मेरी।
4: हाँ तो मालिक यही है। देखो हम तुम्हारा मकान खरीदेंगे, आधा मकान
3: जी।
4: इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे, इस गली को बदलकर सड़क में तब्दील करेंगे।
3: हाँ?
4: तुम्हारे आधे मकान की जमीन को गली के साथ मिलाएंगे
3: जी। तो मैं कहाँ जाऊंगा?
4: अरे भाई, आधी जमीन पर रहने के लिए घर बनवाना, और आधी जमीन के एवज में आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। और देखो, अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो नई कॉलोनी में प्लॉट के लिए मंजूरी दे देंगे। बोलो क्या चाहते हो?
0: तो फिर तुमने क्या किया?
3: मैं कुछ कह न सका, कुछ तय नहीं कर पाया, रात को सोया भी नहीं।
0: तुम बड़े भोले हो।
3: आप भी अच्छे हैं, मुझे हर इंसान अच्छा लगता है।
0: अच्छा तो फिर तुमने क्या किया?
3: चंद रोज बाद वो फिर आए और मुझे आधे मकान की जमीन के बदले अच्छी खासी रकम देकर चले गए। इतने रुपए मैंने कभी

0: थी नहीं थी, मैं फूल आना थमाया। मुझे मुझे लगा मैं लटपटी बन गया हूं। मुझे मालूम नहीं कितने रुपए थे, मगर थे 100-100 के नए बंडल, बहुत सारे। कमरे में जाकर इन नोटों को फैला कर रखा, फिर गिनने लगा, मगर गिन न सका। कभी उन्हें हाथों से कुरमुराता था, कभी चूमता था, और कभी दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगाता था। एक अजीब सी कैफियत मुझ पे छा गई। सारा दिन इन्हीं नोटों के साथ खेल खेल में गुजर गया। लेकिन जब शाम को बाहर झांका तो क्या देखता हूं, मेरा मकान अपने वजूद खोकर आधा रह चुका है।
1: ओह, गिरा दिया था क्या उन्होंने?
0: जी जी हाँ। अब मुझे लगा कि वो जमीन मुझे कोस रही है,
1: शायद इसलिए कि तूने उसे बेच दिया।
0: हो सकता है, हो सकता है आप सही हो, पर जी हाँ, मैंने अपने लिए नहीं, लोगों की राहत के लिए उसे अपने से जुदा किया।
1: अंधेरा बढ़ रहा है,
0: पहाड़ों में शाम जल्दी होती है ना?
1: बगीचे में रोशनी का इंतजाम नहीं है
0: जी, क्या मालूम, मैं यहाँ हर रोज नहीं आता।
1: अच्छा, तो फिर तुमने उन नोटों का क्या किया?
0: जी हाँ, तीसरे दिन कि सड़क चौड़ी हो रही है।
2: ए भैया, इधर आना, ऊपर, तुम मेहमान हो ना?
3: जी हाँ, फुटपाथ पर पलस्तर मैं ही करता हूँ, क्या है?
2: अरे भाई, एक बात कहनी है, ऊपर आओ।
3: अच्छा अच्छा, आता हूँ।
0: देखो मेरे पास कुछ है।
2: क्या है?
0: शी देखो,
3: अरे बाप रे बाप, इतने सारे लोग।
0: हाँ, मेरा एक काम करोगे?
2: अरे हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बोलो तो।
0: आधी जमीन सड़क से मिलाई है ना?
2: हाँ, सो तो है।
0: तो भाई, आधी जमीन पर मेरा नया घर बना दो।
3: अरे भाई, इसमें क्या मुश्किल है, मैं कल ही आदमी काम पर लगाऊंगा।
0: ठीक है, तो फिर ये सारे रुपए तुम रख लो।
3: और तुम?
0: अरे भाई, मुझे क्या करना है, रहने को छत हो, दो जून की रोटी तो मैं कमा ही लेता हूँ।
1: भी हवा चल रही है, कंठोप पहन लेता हूँ।
0: साहब, आप क्या ढूंढ रहे हैं?
1: वो कंठोप था, मुझे तो पर गुस्सा भी आता है और तरस भी।
0: हाँ साहब, काफी देर से परेशान जो कर रहा हूँ आपको।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, तो तुम करते क्या हो?
0: शायरी।
1: मेरा मतलब है, रोटी कैसे कमाते हो?
0: बताया तो था साहब कि सेठ के पास काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ईमानदारी और मेहनत से रोटी कमाता हूँ।
1: वो नेमार क्या करता है अब?
0: वो तो साहब अब बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया है, सामने का पुल उसी ने बनाया है। उसके पास बंगले हैं, मोटर हैं। अब क्या आपके पास भी मोटर है?
1: नहीं, मेरे पास साइकिल थी, मेरा बेटा मोटरसाइकिल चलाता है।
0: मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है।
4: पॉलिश, बहुत पॉलिश, पॉलिश, बहुत पॉलिश।
2: साहब, पॉलिश?
1: नहीं,
2: साहब, आप लोग इस पार्क में अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बत्ती क्यों नहीं जलाई? ये लो, मैं जलाता हूँ।
1: वाह, इस रोशनी में पार्क कितना अच्छा लगता है।
0: चांदनी रात में ये पार्क बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
2: अब अंधेरा बिल्कुल नहीं रहा।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं।
2: साहब, आपका जूता पॉलिश करूं?
1: वो
2: आपने तो रबर का जूता पहना है, और तुमने घास का।

0: पुलहर माफ करना, यहाँ अपना काम नहीं बनने का, चलता हूँ।
1: अरे अरे इधर आओ। क्या तुम इस बगीचे में रोज आते हो?
0: रोज नहीं साहब, जब कोई खरीदार मिल जाए तब।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
0: पॉलिश। जिसने भी पुकारा पॉलिश, मैं हाजिर।
1: अरे भाई घर में तो किसी नाम से पुकारते होंगे।
0: घर? मेरा घर ही कहाँ है साहब?
1: तुम्हारे माँ बाप?
0: बाप को तो देखा नहीं। हाँ, माँ को बचपन में देखा था।
1: अब वो कहाँ है?
0: उस्ताद कहता है एक दिन काली मूंछों वाला काला देव उसे आकर ले गया था।
1: तुम्हें उसकी याद नहीं आती?
0: आती क्यों नहीं, मैंने सबसे पूछा कि वो कहाँ है, पूछ पूछ के थक गया साहब, पर कोई ना बता सका। सभी ने यही कहा कि वो सदा के लिए गई है।
2: बड़ी अच्छी थी वो।
0: क्या क्या तुम मेरी माँ को जानते थे?
2: यूं ही एक बार देखा था।
0: मेरी माँ कितनी अच्छी थी।
2: सभी की माँ अच्छी होती है,
1: जैसे धरती माँ अच्छी होती है।
2: मैंने भी अपने मकान की आधी जमीन धरती माँ को सौंप दी, ताकि उसके बेटे बाहें फैला कर चल सके।
0: मैं चलता हूँ साहब, क्या पता कोई गाय भी मिल जाए। उस्ताद कहता है कि आजकल के जमाने में लोगों के जूतों की नोक, जबान की नोक और मूंछों की नोक चमकाने से लोगों का रुतबा बुलंद होता है।
1: तुम स्कूल नहीं जाते?
0: मेरी माँ चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं।
1: तो जाते क्यों नहीं?
0: घर तो है नहीं।
1: तो फिर रहते कहाँ हो?
0: कहीं भी, पार्क में या फिर किसी भी दुकान की परछत्ती के नीचे।
1: ठंड नहीं लगती?
0: लगती क्यों नहीं, जब ठंड बढ़ जाए तो बस अड्डे की किसी भी बस में रात गुजार देता हूँ। मुझे कोई बाहर नहीं धकेलता, सभी लोग मुझे जानते हैं, सभी मेरे दोस्त हैं।
1: और उस्ताद?
0: वो बस अड्डे से अनंत नगर तक लोगों को ले जाता है और वापिस लाता है। साहब उसी ने मुझे ये पॉलिश वाली पेटी ला दी है।
2: अंधेरा बढ़ रहा है श्रीवास्तव जी। हा? क्या आप अंग्रेजी में लिखे इन अल्फाज के माने समझा सकते हैं? अब तो साहब थोड़ी थोड़ी रोशनी।
0: मुझे पढ़ना आता तो मैं पढ़ देता। क्या लिखा है इसमें?
2: मैंने दरखास्त लिखी है।
0: दरखास्त? छुट्टी की? कहाँ काम करते हो साहब?
2: ये छुट्टी की दरखास्त नहीं है बच्चे, इसमें कुछ खास है।
0: खास?
2: छुपता छुपाता यहाँ तक ले आया, बहुत बार चीन आया, इसे देखूं, पढ़ूं या सड़क पर चलने वाले किसी अंग्रेजी जानकार से पूछूं कि इसमें क्या लिखा गया है। लेकिन डर था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फिर भीड़ इकट्ठा होने का भी डर था, इसीलिए इनसे यहां अकेले में मिलने आया था। पर यहां तो पॉलिश।
0: कैसी दरखास्त है साहब?
2: अब तुम नहीं समझोगे।
0: अनंत नगर से आखिरी बस आ गई होगी, अब मैं चलता हूँ साहब।
1: अरे रुको रुको, तुम मेरे साथ जाओगे?
0: मैं डरता नहीं, खुद जा सकता हूँ, अकेले कहीं भी, इधर उधर या बगीचे में।
1: क्या तुम बगीचे के माली को जानते हो?
0: देखा नहीं साहब, पर जानता हूँ, वो बगीचे के किसी भी हिस्से में रह सकता है, शायद हमारी बातें सुन रहा होगा।
1: मालिक के बीवी बच्चे?
0: क्या मालूम कहाँ रहते हैं।
2: मेरा भी एक लड़का था, जवान, जंग में मारा गया, बहादुर था वो। बीवी उसके घर में पागल हो गई और मर गई। हर बरस मैं उसके मजार पर फूल चढ़ाने जाता हूँ।
0: साहब मुझे महक आ रही है, मैं झाड़ी के पीछे से फूल तोड़कर लाता हूँ, वहाँ एक फूल खिला है।
2: चला गया, अकेला है मेरी तरह।
1: हम सभी अकेले हैं, अकेले सफर करते हैं, साथी बिछोड़ते हैं, टिकटें कटती हैं, बटती जाती हैं।

0: रेजिमेंट के अफसरों, जवानों और उनके रिश्तेदारों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो एक एक करके वतन पर शहीद होने वालों की याद में तामीर किए गए इस चबूतरे की तरफ आएं। गुरुवार को पहले आने दीजिए।
1: हाँ हाँ, आइए आइए।
2: शुक्रिया।
0: मैं आपके साथ चलूं, आपको सहारा दूं?
2: नहीं, मैं वहां तक चला जाऊंगा।
0: धीरे धीरे बढ़ रहा है।
1: अरे देखो, लगता है गिर गए हैं।
0: धक्का लगा है,
1: हाथों से फूल गिर गए हैं। देखो तो, अरे ये बेहोश पड़े हैं, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाइए।

0: तुम हिम्मत वाले हो।
1: मैं सिर्फ एक मामूली आदमी हूँ। हाँ श्रीवास्तव साहब, इस दरखास्त पर लिखे अपने ख्वाब की ताबीर देखना चाहता हूँ।
0: क्या लिखा है इसमें?
1: वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लूं कि इस पर ये अंग्रेजी में क्या लिखा गया है।
0: यहाँ कैसे पढ़ूं? ये छोकरा भी अभी तक नहीं लौटा।
1: आएगा आएगा, पेटी तो जमी रखी है।
0: क्या तुम उसकी माँ को जानते थे?
1: एक बार जब मैं मजार से लौट रहा था तो गजब की बारिश हो रही थी।

0: शेर क्या? मेरे मेरे घर में राखी? कौन आ सकता है मेरे घर में? लगता है कोई सांकल खोलकर घुस आया है।
1: कौन घुसा है? बाहर आओ, मैं कहता हूं छुपने से कोई फायदा नहीं, बाहर आओ।
0: उनकी आवाज नहीं, ऐसा करता हूं अंदर जाकर देखता हूं, कोई ठग आया हो। अरे आया भी हो तो क्या कर लेगा, हाथा पाई पर रमादा हुआ तो। अरे तब भी क्या हुआ, मैं कोई कम हूं? लगता है वहां कोई सो रहा है। कौन होगा, पास जाकर देखता हूं। ये क्या,
1: वो गिला फिर गया,
0: फिर भी नहीं जागा। ये क्या, एक औरत और साथ में बच्चा। कौन है ये लोग? मेरे मालिक, ये किस मुसीबत में डाल दिया मुझे? पर ये मैं कौन? लगता है मैं बेकार ही बहन में पड़ा हूं। ये तो कोई दुखियारी ही होगी, इस बारिश से बचने के लिए यहां आ गई होगी और फिर सो गई होगी। इसका क्या कसूर? मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला जो रहता है।

0: वाकई फरिश्ते हो। रात भर बैठे मेरी रखवाली करते रहे, अब आंख लगी तो मैंने जगाया।
1: तुम यहां से चलो, लोग क्या सोचेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा।
0: अरे बाबा, जो बदनाम होने चाहिए वो तो शरीर बने फिरते हैं, तुम इसलिए ज्यादा देर काम भी नहीं कर पाती। झील पर मछली पकड़ने जाती हूँ तो पीछे इसका डर लगा रहता है। ये बड़ा होगा तो खूब सारी मछलियां पकड़ूंगी, उन्हें बेचूंगी, घर की छत बनाऊंगी, इसे स्कूल भेजूंगी, इसके बाप की आरजू पूरी होगी।
1: मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
0: तुम रहम दिल इंसान हो, तुम्हारी दुआओं से मुझे मेरी मंजिल जरूर मिल जाएगी।
1: यहाँ की हवाएं कितनी ठंडी हैं। अरे मरा हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू।
2: मुझे अफसोस है कि मेरी दुआएं बेकार हो गई। मीनू को भी रेगुलर झील में मछलियां पकड़ते पकड़ते अपनी आगोश में ले लिया, और उसका ये बेटा उस्ताद की सरपरस्ती में आ गया। बेटी लिए दर बदर भटक रहा है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए ये दरखास्त लिखी है। अब समझा। हाँ हुजूर, मैं चाहता हूँ कि किसी भी न कोई बेटा बेघर न भटकता रहे, कोई बेटी बाप से न छूटे, भाई बहन से न छूटे। एक मुसाफिर खाना बनाना चाहता हूँ, शशु कहिए यतीम खाना। तुम देवता हो। देखिए मेरी इस दरखास्त पर कुछ लिखा गया है। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। ये बच्चा नहीं आया, फूल तोड़ने गया है। फूल तोड़ना भी

0: आसपास कोई भी टूरिस्ट नजर नहीं आता। पहाड़ी के ऊपर से झील कितनी अच्छी लगती है। सब तरफ खामोशी।
1: लो, मैं इसे गोद में उठाकर लाया हूं। सो गया था बेचारा।
0: कितना प्यारा बच्चा है।
1: इसकी बेटी
0: ये रही।
1: अच्छा, अब हमें चलना चाहिए।
0: कहाँ?
1: मैं अपने घर जाऊंगा, आपसे कल मिलूंगा जब रोशनी होगी।
0: लेकिन ये बच्चा
1: सो तो है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ।
0: नहीं नहीं, इसे मैं ले जाऊंगा।
1: कहाँ?
0: अपने होटल के कमरे में। और तुम भी मेरे साथ चलोगे। चलोगे ना?
1: लेकिन क्यों?
0: ताकि हम इस बेजबान बच्चे को अल्फाज दे सकें, ताकि मैं तुम्हारी दरखास्त को रोशनी

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब मोतीलाल खेमू का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था बेजुबान। पेशकश प्रेम बोहरा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुरमुस से बाहर निकलने वाले अमरीका के जंगी बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को नाकाम बनाए जाने की अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद ईरान को वार्निंग दी है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फिजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अबूजहबी में भारत यूएई जामे किलीदी साझेदारी का जायजा लिया। नेपाल की आईनी काउंसिल ने मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। और बांग्लादेश में खसरा बीमारी के फैलने से पिछले 24 घंटे में मजीद 12 बच्चों की मौत हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमरीका ईरान को और सख्त और जारहाना तरीके से निशाना बनाएगा। सदर ट्रंप का यह बयान अमरीकी दस्तों की जानिब से आबनाए हुरमुस से निकलते वक्त तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर बहरी जंगी जहाजों पर ईरानी हमलों को नाकाम बनाने के बाद आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज ईरानी हमलों के बीच आबनाए हुरमुस से बाहिफाजत निकले। उन्होंने दावा किया कि जहाजों की जानिब मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए, लेकिन अमरीकी दिफा ने उन्हें नाकाम कर दिया, जिससे ईरानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि अमरीका ने इसकी शुरुआत की जब उसने ईरानी तेल टैंकर और एक दूसरे जहाज पर हमला किया और उसके जवाब में ईरान ने अमरीकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का आहिया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें यह जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तख्लीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का यह मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी के नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़िरात की भारतीय चैम्बर के चेयरमैन डॉ एमजे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर इस मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खत्ते में ज्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की

0: सिस्टर भाभी की
1: बच्चे को तुम उठाओ, मैं पेटी उठाता हूँ।
0: लेकिन आपका वापसी टिकट?
1: उसकी अब कोई जरूरत नहीं।
0: क्यों, आप जाएंगे नहीं?
1: नहीं।
0: कब तक?

भारत को शेयर किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए जरई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके कुनबे के अफराद ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फिजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुस से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा। अमरीका के दो अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का यह कदम खलीज के खत्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक किलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है और ईरान के साथ हालिया बातचीत को यह कहते हुए बहुत खुशाइंद करार दिया है कि मुस्तकिल समझौते का कवी इम्कान है। उधर जनूबी लबनान में इसराइल के फिजाई हमले में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कहा है कि उसकी कार्रवाई में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे और उसके इंतहा पसंदों को निशाना बनाया गया। जंगबंदी शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला के 220 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की खबर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कल अबू जबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर ममलुकत और खसूसी एलची रीम अल हशिमी और फ्रांस की यूरोपी और खारजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेंस शामिल थे। वजारत खारजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकतदारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाहे अमल के लिए काम करने से इत्तफाक किया है। नेपाल में आईनी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए डॉ मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉ शर्मा उन 6 सीनियर उम्मीदवारों में चौथे मकाम पर हैं जिनके नाम काउंसिल ने भेजे हैं। इस मीटिंग की सदारत वजीर आजम बालेंद्र शाह ने की। माजी में आईनी काउंसिल सीनियर होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तजवीज करती रही है। बांग्लादेश में खसरा फैलने से मुतालिक खराब सूरतेहाल जुमेरात के रोज बरकरार रही। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल के मुताबिक 24 घंटे के अंदर मजीद 12 बच्चे खसरा और खसरा जैसी अलामात की वजह से हलाक हो गए। इनमें से 6 हलाकतें ढाका डिवीजन में हुई। मस्कूरा सूरतेहाल से मुतालिक ताजा रिपोर्ट में DGHS ने बताया है कि मरने वालों बच्चों में से 1 में खसरा की बीमारी पाई गई, जबकि बाकी 11 बच्चों में खसरा से मुंसलिक अलामात पाई गईं। वियतनाम के सदर तो लाम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में किलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लाम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान ताउन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुस से बाहर निकलने वाले अमरीका के जंगी बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को नाकाम बनाए जाने की अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद ईरान को वार्निंग दी है।

मोहम्मद रफी के साथ ये थी लता मंगेशकर, फिल्म का नाम था ताजमहल। अब सुनिए आशु भोसले के साथ शमशाद बेगम को, फिल्म है नया दौर।

आशिक फिल्म का नगमा भी अपने मुकेश लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है। फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है रेड क्रॉस सोसाइटी।
1: रेड क्रॉस एक रजाकार तंजीम है जो खास तौर पर जंग में जख्मी लोगों को तिब्बी मदद फराहम करती है और आम शहरियों को सेहत के तहत बेदार करती है। ये तंजीम 1863 में जेन हेनरी ड्यूनेंट ने कायम की थी, जिनका यौम पैदाइश 8 मई के मौके पर हर साल पूरी दुनिया में रेड क्रॉस डे के तौर पर मनाया जाता है। एक वक्त था जब जंग में जख्मी सिपाहियों को या आवाम को हंगामी हालात में मुनासिब तिब्बी सहूलियात फौरी तौर पर फराहम नहीं हो पाती थीं। इसी तरह कुदरती आफात जैसे जलजला, सैलाब, वबा वगैरह से मुतासिर लोगों तक तिब्बी मदद पहुंचने में काफी देर हो जाती थी और वो जिंदगी भर के लिए या तो माजूर हो जाते थे या डॉक्टरों और दवाओं की कमी की वजह से दम तोड़ देते थे। हंगामी हालात में कोई किसी का मुहाफिजो मददगार नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर कसो नाकस अपनी जान बचाने और सिर्फ अपनी फिक्र करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे हालात में आम लोगों तक जरूरी तिब्बी सहूलियात और दवाइयां वगैरह बहम पहुंचाने के लिए एक ऐसी तंजीम की सख्त जरूरत थी जो दूर दराज इलाकों तक जाकर रजाकाराना तौर पर लोगों को बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करे। इसी जरूरत के पेश नजर जेन हेनरी ड्यूनेंट ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर 1863 में एक तंजीम बनाई जिसका नाम बैनुल अक्वामी रेड क्रॉस सोसाइटी रखा गया। इब्तिदा में इस कमेटी में 25 रुकन थे जिनका काम बैनुल अक्वामी सतह पर जंग में जख्मी अफवाज तक तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। धीरे धीरे इस तंजीम ने जख्मी अफवाज के साथ कुदरती आफात के मुतासरीन और वबा के शिकार लोगों को बरवक्त दवाइयां वगैरह बहम पहुंचाने का काम शुरू किया। आज रेड क्रॉस के रजाकार अफराद पूरी दुनिया में कम से कम वक्त में जख्मियों तक तिब्बी सहूलियात फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। सेहत के मैदान में हेनरी के इस गैर मामूली इकदाम के लिए उन्हें 1901 में इंसानी खिदमात के कामों के लिए पहला नोबेल इनाम बराए आलमी अमन से नवाजा गया। हेनरी की पैदाइश 8 मई 1828 को जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। शिमाली इटली के सफर के दौरान जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जबरदस्त जंग जारी थी, उन्होंने निहत्ते शहरियों को हलाक होते हुए देखा और यह भी देखा था कि कैसे जख्मी फौजी फौरी तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस हादसे ने उनको रेड क्रॉस नामी तंजीम बनाने की तहरीक अता की। रेड क्रॉस ने पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान घायल फौजियों और आवाम की तीमारदारी और खिदमतगुजारी में जबरदस्त रोल अदा किया। आज दुनिया के तकरीबन 150 से जायद ममालिक में इस तंजीम की शाखें कायम हैं जो दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। सीरिया से लेकर सोमालिया और नेपाल से नाइजीरिया तक इस रजाकार तंजीम के अफराद ने अपनी जान जोखम में डालकर अवाम तक बरवक्त खिदमात फराहम की। हिंदुस्तान में इस तंजीम की दागबेल पहली जंग अजीम के दौरान 1920 में पड़ी जब एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी का क्याम अमल में आया। 1994 में एक तरमीम के जरिए हिंदुस्तान में इस तंजीम का चेयरमैन इज्जत माब सदर और सेक्रेटरी मरकजी वजीर बराए सेहत को बनाया गया। इस तंजीम ने अब तक कई सूबों और जिलों में अपनी शाखें कायम कर ली हैं। तहत बंगाल के दौरान रेड क्रॉस ने जबरदस्त इंसानी खिदमात का मुजाहरा किया। इस तंजीम की पहचान के लिए सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस निशान को मंजूरी दी गई है। आज ये निशान पूरी दुनिया में परेशान हाल इंसानियत की खिदमात की अलामत बन चुका है। इस तंजीम की कोशिशों से ही पहले ब्लड बैंक का कयाम अमरीका में 1937 में अमल में आया। आज दुनिया के ज्यादातर ब्लड बैंक रेड क्रॉस और उसकी मुआविन तंजीमों की निगहदाश्त में काम कर रहे हैं।

0: 150 साल की मुद्दत में रेड क्रॉस एक तहरीक बन चुका है। इस तंजीम के बुनियादी मकासिद में सभी मुल्कों में रेड क्रॉस को वसत देना, जनेवा इजलास में हुए फैसलों पर अमल के लिए राजी कराना, जंग के दौरान जख्मी लोगों तक मुफ्त इलाज पहुंचाने के लिए बैनुल अक्वामी एजेंसी का कयाम करना, जेलों में बंद पड़े कैदियों की तिब्बी देखभाल करना, जंग, बीमारी या दूसरी कुदरती आफात के दौरान अपनी खिदमात देना और दूसरे लोगों को इसके लिए मुतहर्रिक करना शामिल है। ये तंजीम जात पात, मजहब, इलाकाइयत और रंग की तफरीक से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत की खिदमत को अपना नस्बुलैन समझती है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज, मौजूद था रेड क्रॉस सोसाइटी। तहरीर जनाब मोहम्मद मूसा अंसारी की थी और रावी थे एसएम नुमान। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए अगली पेशकश। निखिल पॉल और श्रेया घोषाल को फिल्म है बर्फी।

0: यह आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, भारतीय सेना का शौर्य और आतंकवाद पर अचूक प्रहार।
2: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। रामचरितमानस की इस पावन चौपाई में एक शाश्वत और मौलिक सत्य निहित है कि सहनशीलता सदैव महान और स्थायी होती है, लेकिन जब उसका गलत अर्थ निकाला जाए या उसे दुर्बलता समझ लिया जाए तो वही सहनशीलता धर्म संगत और अडिग शक्ति का रूप ले लेती है। भारत ने हमेशा अपने धैर्य की गहराई से शक्ति प्राप्त की है, लेकिन इतिहास चेतावनी देता है जब सीमा हद से ज्यादा पार हो जाए तो हिमालय भी ज्वालामुखी जैसी बन उठती है। भारत के भाग्य का भी एक नया अध्याय इसी प्रकार प्रारंभ हुआ जब देश ने सहनशीलता के बजाय अपने इतिहास से सीखते हुए अन्याय का जवाब अग्नि से दिया। अप्रैल 2025 वो सुबह भी किसी आम दिन जैसी ही थी। पहलगाम, जहाँ की हवाओं में केसर की महक और पानी में बर्फ की ठंडक होती है, उसी पहलगाम के खूबसूरत वादियों में पर्यटक घूम रहे थे। हंसी, तस्वीरें और यादें बन रही थी और तभी गूंज उठी गोलियां और शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा? धर्म बताओ, गोली मार दो।
3: पर्दी क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी, बोला कि ये शहर मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
4: प्लीज आज बोरेल, मेरे पति का बच्चा, प्लीज
2: भगवान के लिए बचा। 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे भारत वर्ष में शोक ने संकल्प का रूप लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया, जवाब होगा और ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।
5: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: देश की राजधानी दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, खुफिया इनपुट्स जुटाए जाने लगे, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी, हर एक लोकेशन को ट्रेस किया जाने लगा और फिर तैयार हुआ एक प्लान, सटीक, गुप्त और निर्णायक। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर।

सिंदूर जो सम्मान का प्रतीक है, और जब यही सम्मान चुनौती में पड़े तो वही सिंदूर बन जाता है प्रतिशोध का संकल्प। 7 और 8 मई की रात 1:04 से 1:28 के बीच आधी रात का सन्नाटा भारतीय तोपों की गर्जना से टूट गया।

0: भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी आसमान को चीर दिया, तेज, सटीक और अजेय। यह हमारी भारतीय सेना के तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक इच्छा शक्ति का ही प्रमाण रहा कि भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सटीकता के साथ गरजते हुए पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को धू धू कर जलते हुए खंडहरों में बदल दिया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। प्रत्येक हमले ने आतंक के हर उस वैचारिक धड़कनों पर प्रहार किया जिसने हत्यारों को हमारी सीमा पार भेजा था। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश को इस बारे में उस समय आधिकारिक जानकारी प्रदान करते हुए कहा,
1: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
0: भारत ने महत्वपूर्ण पाकिस्तानी हवाई ठिकानों, रनवे स्ट्रिप्स, वायु रक्षा प्रणालियों और प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों सैन्य कर्मी मारे गए। 11 पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकाने को इस तरह सटीकता से मिसाइलों ने तबाह किया कि वे तुरंत ठीक कर इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते थे। उनके एयरबेस के रनवे खंडहर में पड़े थे, हैंगर सुलग रहे थे, जबकि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, राफेल, तेजस और सुखोई सीमा पर दृढ़ता से गश्त लगा रहे थे, अविचल और चुनौती रहित। संदेश साफ था, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए भारतीय सेना को सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गहराई, कोई दूरी, कोई रक्षा पाकिस्तान को भारत के संकल्प और पहुंच से नहीं बचा सकती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को साहसिक प्रयास बताया।
2: भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारतीय रक्षा व्यवस्था में आए उस बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया जिसने देश की सुरक्षा सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज भारत की सीमाओं पर केवल सैनिक ही नहीं अत्याधुनिक तकनीक भी तैनात है। ड्रोन निगरानी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियारों की बढ़ती ताकत भारत को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना रही है। जहां कभी रक्षा उपकरणों के लिए दुनिया की ओर देखा जाता था वहीं आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत टैंक से लेकर मिसाइल और युद्धपोत तक भारत खुद बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और तेज हुआ, निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक चुस्त बनी और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खास ध्यान दिया गया। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि हिंद महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक

0: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: आज इस ऑपरेशन को एक साल पूरा हो गया है। आज भी जब सीमा पर हवाएं चलती हैं, तो उनमें उन जांबाजों की वीरता की गूंज सुनाई देती है। एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे मील का पत्थर बताया।
2: We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे, और साथ ही साथ हम जो दुनिया भर में एक सहमति बन रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए और वैश्विक जोड़ इस लड़ाई में लाने के लिए, उसमें भी हम लोग संलग्न हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर, ये कहानी है उस माँ के बेटे की जिसने सरहद पर फर्ज निभाया, उस पत्नी के साहस की जिसने अपने सुहाग के सम्मान के लिए सिंदूर के संकल्प को जिया।
3: आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया।
1: इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की विरासत यही दर्शाएगी कि भारत एक ही समय में दयालु और अडिग, सिद्धांतवादी और शक्तिशाली, नैतिक और सैन्य रूप से कुशल और परंपरागत है। हमने पूरे विश्व को बताया है कि भारत के लिए न्याय सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति भी है, और जब राष्ट्र के संप्रभुता और साहस की परीक्षा होगी तो हम खुद की रक्षा के लिए स्वतंत्र और काफी हैं। हम केवल उस सभ्यता की अदम्य भावना के साथ कार्य करेंगे जिसने लंबे समय तक धर्म के झंडे को ऊंचा रखा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आक्रमण हमारी पवित्र धरती पर कभी शरण न ले सके।
3: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
1: आज हम इसके एक वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, भारत झुकता नहीं है, भारत रुकता नहीं है, भारत जवाब देता है। जय हिंद।

0: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारतीय सेना का शौर्य और आतंकवाद पर अचूक प्रहार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: अब आप हबीबुर रहमान से आलमी खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुरमुज से बाहर निकलने वाले अमरीका के जंगी बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को नाकाम बनाए जाने की अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद ईरान को वार्निंग दी है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अबूधाबी में भारत UAE जामे कलेदी साझेदारी का जायजा लिया है। नेपाल की आईनी काउंसिल ने मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। और बांग्लादेश में खसरा बीमारी के फैलने से पिछले 24 घंटे में मजीद 12 बच्चों की मौत हो गई। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमरीका ईरान को और सख्त और पुरतशद्दुद तरीके से निशाना बनाएगा। सदर ट्रंप का यह बयान अमरीकी दस्तों की जानिब से आबनाए हुरमुज से निकलते वक्त तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर बहरी जंगी जहाजों पर ईरानी हमलों को नाकारा बनाने के बाद आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज ईरानी हमलों के बीच आबनाए हुरमुज से बाहिफाजत निकले। उन्होंने दावा किया कि जहाजों की जानिब से मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए, लेकिन अमरीकी दफा ने उन्हें नाकाम कर दिया, जिससे ईरानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि अमरीका ने इसकी शुरुआत की जब उसने ईरानी तेल टैंकर और एक दूसरे जहाज पर हमला किया और उसके जवाब में ईरान ने अमरीकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किया जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया और उसमें जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा है कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की सफर से तबाही से लेकर तख्लीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का यह मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा है कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फदाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने हुरमुज से बहरी जहाजों को बहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है।

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुरमुज से बाहर निकलने वाले अमरीका के जंगी बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को नाकाम बनाए जाने की अमरीकी फोर्सेज की कार्रवाई के बाद ईरान को वार्निंग दी है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फदाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अबूधाबी में भारत UAE जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लिया है। नेपाल की आईनी काउंसिल ने मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। और बांग्लादेश में खसरा की बीमारी फैलने से पिछले 24 घंटों में मजीद 12 बच्चों की मौत हो गई है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने

0: नए हुर्मुज से बाहर निकलने वाले अमेरिका के जंगी बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को नाकाम बनाए जाने की अमेरिकी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद ईरान को वार्निंग दी है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमेरिकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने अबूधाबी में भारत यूएई जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लिया। नेपाल की आईनी काउंसिल ने मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। और बांग्लादेश में खसरा बीमारी के फैलने से पिछले 24 घंटे में मजीद 12 बच्चों की मौत हो गई है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के साथ दिन में 3 बजे हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: ये उनके भाई विजय आनंद की पहली निर्देशित फिल्म थी, 1934 की अमेरिकी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट। इससे आंशिक रूप से ये फिल्म प्रेरित थी और इस फिल्म में नजर आए थे देवानंद, कल्पना कार्तिक, मदनपुरी, शशिकला और जीवन। फिल्म का संगीत जो आप सुन रहे हैं एसडी बर्मन साहब ने दिया था और गीत मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे।

9/2/1957 में रिलीज हुई एक शानदार रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है, जिसे हमने आपको बताया निर्देशित किया था विजय आनंद ने। मुख्य भूमिका में देवानंद थे जो कि मदन के किरदार में नजर आए थे, कल्पना कार्तिक ने राखी और एक और किरदार इन्होंने निभाया था। इसके अलावा जीवन सुरजीत के किरदार में नजर आए थे, मदनपुरी राधेश्याम राधे के किरदार में थे, शशिकला नीता के किरदार में थी, कृष्ण धवन कुलदीप बने थे, ललिता पवार कुलदीप की माँ बनी थी। इसके अलावा जगदीश राज हेलेन जिन्होंने बहुत सुंदर डांस किया था, टुनटुन जो एक मकान मालकिन के किरदार में थी, ये सब इस फिल्म में चार चांद लगाने के लिए काफी थे। 9/2/1957 में बनी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी और उनके छोटे भाई यानी कि देवानंद की छोटे भाई उन्होंने विजय आनंद ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। और आप जानते ही होंगे कि जो कल्पना कार्तिक हैं वो देवानंद साहब की पत्नी भी थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं, हम है राही प्यार के, आंखों में क्या जी, जो आप सुनी रहे हैं। और हम है राही प्यार के बस अब कुछ देर में ही मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इन गीतों को अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, रफी साहब ने। और गीतों में सबसे खास बात पता है क्या थी, उसमें सफर की मस्ती और आजादी की खुशबू दोनों नजर आती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से किशोर दा की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह

0: प्यार के हम से कुछ न बोल।
1: फिल्म 9-2-11 इससे जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग जब कर रहे थे तो इस फिल्म में उनके साथ जो देवानंद साहब थे उनके साथ कल्पना कार्तिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी और आगे चलकर वो देवानंद साहब की पत्नी भी बनी थी। फिल्म का डायरेक्शन देव साहब के भाई विजय आनंद कर रहे थे और देव साहब खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म 9-2-11 की शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी और एक बार फिल्म की पूरी यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूटिंग कर रही थी। शिवपुरी इलाका शायद आपने सुना होगा, वैसे आपको बता दूं कि मेरा होम टाउन वही है, तो रात को उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। ये वो दौर था जब डाकुओं का बहुत शोर था। पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में रुकी थी, तभी एक रात देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने अंदर से पूछा, कौन है? तो आवाज आई, हम है बगर सिंह। ये सुनते ही देव साहब के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला बंदूक लिए एक आदमी खड़ा है। इससे पहले देवानंद साहब कुछ कह पाते, बगर सिंह ने देव साहब की एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए कहा कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये सुनकर देव साहब की जान में जान आई और उन्होंने अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके उन्हें बगर सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते बागी बगर सिंह ने देव साहब से कहा कि देव साहब अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना, और इतना कहकर वो वहां से चले गए। तो ये वो किस्सा था, शायद देवान साहब इस किस्से को कभी भी नहीं भूले होंगे। 9-2-11 फिल्म थे वो विजय आनंद की पहली हिंदी फिल्म थी और इसमें उन्होंने अपने भाई और बाद में जो हीरोइन थी, बाद में उनकी जो भाभी बनी, उनको लिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपन वन नाइट से काफ़ी इम्प्रेस थी और देवानंद अगर इस फिल्म में नहीं होते तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि वो उन्होंने इस फिल्म की जो पटकथा थी उसकी बारीकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था। हर चीज़ को उन्होंने अपने हिसाब से, जब तक कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उन्होंने उसमें सुधार करते रहे, और उसके बाद जब ये फिल्म बनी तो लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया।

आशा जी और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म 9-2-11 कहानी है मदन नाम के एक बेफिक्र नौजवान की जो अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीता है। उसे एक कार को दिल्ली से मुंबई ले जाने का काम मिलता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की जो लड़के के भेष में उनके साथ सफर करती है। रास्ते में दोनों के बीच नोकझोंक मस्ती और धीरे धीरे प्यार पनपता है, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई सामने आती है। पहचान, धोखा और प्यार का असली इम्तिहान इस फिल्म में दिखाया गया है। असली रोड ट्रिप ये फिल्म जो एहसास दिलाती है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग जो थी वो असली लोकेशन पर ही हुई थी और पूरी फिल्म एक रोड पर ही नेचुरल तरीके से फिल्माई गई थी, इसीलिए इसको रोड मूवी भी कहा जाता है। देवानंद का जो कैजुअल और चार्मिंग अंदाज था इस फिल्म में लोगों ने इतना पसंद किया कि वो युवाओं के आइकन बन गए थे। विजय आनंद की ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे का जो एंगल था और कहानी कहने का जो अंदाज था उससे अपनी एक अलग पहचान बना ली। कल्पना कार्तिक एक लड़के के भेष में इतनी खूबसूरत लगी थी और जब वो सफर करती हैं उस दौर में ये वेशभूषा और एक लड़के के अंदाज में उनको एक हीरोइन को दिखाना काफी दिलचस्प भी था और एक नया कॉन्सेप्ट भी था। ढेर सारे संदेश भी पहुंच रहे हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को मैं शामिल करूंगी।

हमारे साथ अजीत भापसर, प्रमीला भापसर और सनी जी जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से। अगला संदेश हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम, इंदिरा और सार्थक शर्मा का आया हुआ है। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, नूर, गुलराल, अभिराज जी हमारे साथ हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, देवानगन जी हमारे साथ हैं। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरब, ज्योति रानी, गुरमत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार, दुर्गा जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुरेश जाघव, अनीता, सोनल जी का नेहरू चौक पैठन से आया हुआ है। देवशंकर तामोरी, अजय देव, मास्टर अल कवि, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और राजकुमार डूंडी जी, प्रमोद कुमार डूंडी जी गांव फरासी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, मास्टर अल कवि, रेडियो श्रोता संघ डूंडी लोहार बालो से हैं। अगला संदेश जो हमारे पास पहुंचा है ये पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, फालसिका पंजाब से भूषण खेड़ा जी और उनके परिवार वालों का आया हुआ है। नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और परिवार के सभी सदस्य हैं। सुदर्शन मुखी जी ने बड़े बहुत ही सुंदर स्टाइल से हमें लिखा है इस फिल्म का नाम 9/2 और 11। और अगला जो संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा का है। चंडीगढ़ से अनीता अनेजा, बिमल अनेजा जी हमारे साथ हैं। जीवी राणा नेहरू बयार दिल्ली से हैं। राजकोट से परवीन बाबू, रेशमा, सकीला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जगह, अच्छा ये अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी हैं। बटिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली जी हैं। और अगला संदेश या संबलपुर काकिर से फागुन राम, ज्योति ओचस्वी जी का है। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन शु, उषा टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं। ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जो जालंधर पंजाब आप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज परदीन और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुकेश कासलेकर जी तहसील बरुण, अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं हमारे साथ। और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बन्ने ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली जी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पाट डिंगिया जी हमारे साथ हैं। हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी का एक और संदेश है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित जी, रघुनाथपुर, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा, पूजा परिहार जी हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस सफर में, हमारे हम सफर बनने के लिए। दो संदेश और हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिर डार उर्फी जान यूसरा जी हमारे साथ हैं। एक और संदेश से है ये गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर से साइना हसन और सैयद मसरून जी।

तो दोस्तों 9-2-11 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सफर है, मस्ती है, प्यार है और जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती हुई फिल्म है। ये पुराने सिनेमा का जादू है जब टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन असलीपन भरपूर था। उम्मीद

करते हैं कि आज की ये फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और जरूर देखिए। फिलहाल मैं अब आपसे अनुमति लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ। तो अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: उर्दू समाचार साडे दिल्ली के अंदर तो।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने लिए आज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होगी। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ ते भारतीय हवाई फौज ने ओडिशा दे तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा रक्षा प्रणाली की सफल परख की है। रेलवे ने रेल सुरक्षा ते जोर दिंदे उत्तरी रेलवे के मुख रूटा ते कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विस्तार नूं मंजूरी दे दित्ती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व आर्थिक स्थिरता के थम वजों भारत की वध रही भूमिका और अंतरराष्ट्रीय खुशहाली विच देश के महत्वपूर्ण योगदान उजागर किया। आईपीएल क्रिकेट विच अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम च दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने लिए अज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होगी। केंद्रीय निगरान ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग विच मौजूद रहेंगे। ओ कोलकाता पहुंच गए ने। भाजपा ने हाल ही विच हुई विधानसभा चोणां विच इतिहासक जित दर्ज कीती जिस नाल सूबे विच टीएमसी दे 15 साल दे शासन दा अंत हो गया है। पश्चिमी बंगाल की पहली बीजेपी सरकार का सहुं चुक समागम कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड विच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रधान नितिन नवीन और सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहुं चुक समागम विच शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय हवाई फौज ने कल ओडिशा के तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा हथियार प्रणाली की पहली परख उड़ान सफलतापूर्वक की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान विच कहा है कि तारा देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो अनिर्देशित हथियार नूं स्टीक निर्देशित हथियार विच बदलती है। मंत्रालय ने दस्सिया कि तारा नूं डीआरडीओ दीआं होर प्रयोगशालावां नाल हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत प्लस वालों विकसित ते डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जमीन आधारित टीचे नष्ट करने लिए घट कीमत वाले हथियार की मारू समर्था ते शुद्धता वधाउणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली टेस्ट उड़ान लिए डीआरडीओ हवाई फौज डीसीपीपी अते उद्योग नूं बधाई दी है। उन्होंने इस नूं भारत दीआं स्वदेशी रक्षा समर्थावां नूं अगे वधाउण विच इक महत्वपूर्ण घटना दस्सिया है। रेलवे ने रेल सुरक्षा ते आधुनिकीकरण ते जोर दिंदे उत्तरी रेलवे दे मुख रूटा ते स्वदेशी तौर ते विकसित कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली दे विस्तार नूं मंजूरी दित्ती है। इस प्रोजेक्ट ते लगभग 362 करोड़ रुपए दी लागत आएगी। इस तहत फिरोजपुर ते जम्मू डिवीजनां ते अहम हिस्सों विच लगभग 1478 किलोमीटर लंबे रेल मार्गां ते कवच सिस्टम स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रोजेक्ट तहत फिरोजपुर डिवीजन विच लगभग 241 करोड़ रुपए की लागत नाल 1000 किलोमीटर तो वध पटरी ते कवच स्थापित किया जाएगा। जम्मू डिवीजन विच जलंधर सिटी जंक्शन, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, बटाला पठानकोट जंक्शन ते बनिहाल बारामूला सैक्शन ते लगभग 121 करोड़ रुपए की लागत नाल लगभग 446 किलोमीटर पटड़ी ते कवच सिस्टम लाया जाएगा। कवच सिस्टम देश की स्वदेशी तौर ते विकसित आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इस विच रेल हादसों नूं रोकण लई आटोमैटिक एमरजेंसी ब्रेक की व्यवस्था है। इस साल मार्च में राष्ट्रीय पेंशन योजना

0: महान सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह के मैराथन और वॉकाथॉन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद यह फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओन देर लैन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में शानदार 111 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। DRDO और भारतीय फजाइया ने मुल्क ही में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाब अलामत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस। भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद

0: व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक

0: बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:17 हो रहे हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी लिसनर्स का एक ही कलाकार कार्यक्रम का। सफर मनीषा के साथ तय होगा आज आपका, तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, एक ही कलाकार में आज बात उस अभिनेत्री की जिसने नायिकाओं को सिर्फ ग्लैमर नहीं गरिमा, संवेदनशीलता और सशक्त नारी का पक्ष दिखलाया। 80 से 90 के दशक में जिसने मराठी सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और सहज अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें उनके चाहने वालों ने सादगी और प्रतिभा का सुंदर संगम माना। मराठी थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक और फिर अमेरिका में नई जिंदगी का सफर, लेकिन कला से रिश्ता उनका कभी नहीं टूटा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर उनके अभिनय से सजे इस गीत के साथ।

अच्छा है ना फिल्म में। ये जो अंदाज था अश्विनी भावे का इस गीत में, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में ये गीत सुना, और जो चाहने वाले फिल्म जगत के हैं वो अश्विनी भावे के अभिनय को कभी भुला नहीं सकते हैं। 7 मई को मुंबई में जन्मी अश्विनी भावे ने अभिनय की शुरुआत स्कूल के दिनों में थिएटर से की। कहा जाता है कि मंच पर उनकी पकड़ इतनी स्वाभाविक थी दोस्तों कि कम उम्र में ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपने अभिनय की तरफ खींच लिया था। इस तरह उन्होंने मराठी रंगमंच और फिल्मों से अपने करियर की मजबूत नींव रखी। स्कूलिंग के साथ साथ थिएटर गगन भेदी से शुरुआत और फिर मराठी डेब्यू शाबाश सुनबाई जो 1986 में हुआ, फिर जल्द ही आशी ही बनवा बनवी 1988 में जो उनका रंगमंच रहा, और कलाट नकलट जो 1989 में जैसे अभिनय के मंचों के साथ फिर वो फिल्मों में और फिर मराठी सिनेमा के शीर्ष पर पहुंचने वाली अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार किया। आरके फिल्म्स की हिना जो 1991 में आई, राज कपूर के सपनों की इस फिल्म में जिसे राज कपूर के निधन के बाद रणधीर कपूर ने पूरा किया, और इस बड़े प्रोजेक्ट में अश्विनी ने चांदनी का किरदार निभाकर राष्ट्रीय पहचान हासिल की। लेकिन दोस्तों, सीमाओं से परे प्रेम की कहानी और अश्विनी का सधा हुआ अभिनय भले ही फिल्म की मुख्य भूमिका में यानी कि नायिका जेबा बख्तियार के लिए उसके समतुल्य नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो अभिनय किया उसमें अश्विनी की उपस्थिति इतनी प्रभावी रही कि हिंदी दर्शकों ने उसे खूब सराहा और आज भी उनके उस अभिनय को नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं उनपे फिल्माई गई एक अगली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इसे सुनते ही आप भी अश्विनी जी के उस सधे हुए अभिनय के दर्शन करने लगेंगे। आप वहां खो जाएंगे जहां वो एक सजीव चित्रण में अपना अभिनय परोसती थीं।

हैं 90s के क्लासिक प्लेलिस्ट में शामिल वो हिस्सा, वो गीत हैं जिसमें अभिनेत्री अश्विनी भावे की लोकप्रियता ने शिखर को छुआ है। और अश्विनी भावे की बात करें तो उन्होंने इस तरह कई फिल्मों में काम किया, जैसे मीरा का मोहन, सैनिक, परंपरा, बंधन जैसी कई फिल्मों में अपनी छाप बनाई। सैनिक में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया। उनका अभिनय अक्सर ग्लैमर से ज्यादा भावनात्मक गहराई के लिए सराहा गया। और दिलचस्प बात यह भी रही कि उन्होंने कई बार ऐसे किरदार चुने जिनमें भारतीय नारी की मजबूती और संवेदनशीलता साफ नजर आती थी। तो चलिए सुनते हैं उनके अभिनय से सजा एक और खूबसूरत सा गीत जो आपको लेकर चलेगा उसी खूबसूरत दुनिया में जब उनके खूबसूरत अभिनय के जलवे बिखरे होते थे।

हालांकि अश्विनी भावे, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, भारतीय फिल्म की वो अदाकारा जिन्होंने 80 और 90 के दशक में फिल्मी जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने विवाह के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी दोस्तों, और अमेरिका जाकर मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। यानी उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, सिनेमा की तकनीकी बारीकियां भी सीखी। बतौर अभिनेत्री उनका यह कदम उस दौर में काफी अलग था, जब कई अभिनेत्रियां शादी के बाद पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाया करती थीं। ऐसे समय में अश्विनी भावे ने खुद को नए रूप में विकसित किया। विवाह के बाद 2008 में उन्होंने कदाचित से फिर दमदार वापसी की, और सबसे खास बात कि इस फिल्म की वो निर्माता भी रहीं। एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा उम्र या दौर की मोहताज नहीं होती। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड भी दिया गया। और अश्विनी भावे अपने जीवन में सिर्फ अभिनेत्री के रूप में नहीं रहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया।

साथियों, एक ही कलाकार में अश्विनी भावे, 80 और 90 की दशक की वो अभिनेत्री जिनके अभिनय ने लाखों दिलों को अपने दिल में बसाया।

શિવાજી બોખડે, શ્રીમતી નંદા બોખડે, હનુમાન બોખડે, અંબેડકર ચોકી વાકોડી સે ઓર ઉનકે સાથ ઉત્તમ જમદાડે ઓર સ્વરાજ જમદાડે હૈ. हमारे इन श्रोता साथी का भी हम स्वागत करते हैं. कार्यक्रम सुनने वाले और जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है उनमें हमारे साथी हैं चिरमिरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, बहुत स्वागत आपका. उसी तरह छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ. उसी तरह अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से और हमारे साथ हैं बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बास और अबान अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार. उसी तरह हमारे साथ हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रधान खुराना. जी बहुत स्वागत है आपका. हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, उनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांति नगर सोनीपत से, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है. संदीप मकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. देखिए हमारे श्रोता साथी जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को और बढ़ाते हैं. तो चलिए हम बात कर रहे हैं अश्विनी भावी की दोस्तों, क्योंकि अश्विनी भावी की जीवन यात्रा हमें सिखलाती है कि सफलता सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि निरंतर रहना है. भाषा कोई सीमा नहीं, प्रतिभा हर मंच में चमक सकती है और परिवार और करियर दोनों को संतुलित बनाया जा सकता है. ये हमें अश्विनी भावे ने अपनी जिंदगी में और अपने काम से हमें सिखलाया है. मराठी और हिंदी दोनों क्षेत्रों में उन्होंने परिवार, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता जैसे विषयों को सिनेमा के भीतर जगह दी. बाद के वर्षों में डॉक्यूमेंट्री और सामाजिक विषयों से जुड़ाव कला को उद्देश्य के साथ जोड़ने की वो मिसाल बनती रहीं. उनकी यात्रा खासकर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन के अलग अलग चरणों में खुद को फिर से परिभाषित करना चाहती हैं. तो चलिए चलते चलते ये अंतिम गीत इस कार्यक्रम का हम सुनते हैं अश्विनी भावे का. ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, सुनिए.

तो दोस्तों ये थी आज के एक ही कलाकार में अश्विनी भावे की जीवन यात्रा की कहानी। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इन मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।

0: बहुत ही खूबसूरत रही ये धुन और बहुत ही अच्छी जब भी इसे सुने। दूसरा अब ये गमन की बात आई तो याद आती है उनकी जानिसार अख्तर साहब मरहूम की फिल्म प्रेम पर्वत में बेहद आपका वो गीत मकबूल हुआ ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और बहुत अरसे के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत मेलोडी सुनने को मिली थी, बहुत ही पसंद किया गया और आगे बड़ा अच्छा लगता है। इस गीत के बारे में बताइए, ये गीत पहले लिखा गया था या धुन पहले बनाई थी?
1: जबार साहब, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं मेरे सामने गीत या गजल या नज्म जो भी हो पहले आए उसको उसके मूड को समझ कर मैं ट्यून बनाऊं। मगर ये गाना मैं ऐसे बैठे गुनगुना रहा था एक धुन
0: जी,
1: तो जानिसार भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जयदेव इस पर ऐसे बोल रहे तो कैसे चलेगा।
0: अच्छा।
1: और वो जानिसार भाई तो कमाल के शायर थे,
0: इसमें कोई शक नहीं,
1: और वो मैं फिल्मी गानों में जैसे

0: अच्छा जयदेव जी, एक फिल्म थी सुनील दत्त साहब की, रेशमा और शेरा, जिसके बारे में अभी आपने कहा भी था। उसमें एक गीत आम रविश से बिल्कुल हटकर है और बहुत अरसा दराज के बाद इस तरह का एक गीत सुनने को मिला था हमें। एक तो ये मजबूर जवानी ऊपर, उस पर ये तन्हाई मेरी तौबा, आशा भोसले की आवाज में। इससे बहुत अरसे पहले एक फिल्म किस्मत बनी थी जिसका म्यूजिक दिया था अनिल विश्वास जी ने, खुदा उन्हें खुश रखे। उसमें गाना था ऐ दुनिया बता हमने बिगाड़ा है क्या तेरा। तो दोनों गीतों में एक चीज मुझे मुश्तरक ये महसूस हुई कि उसमें वेरिएशंस दिए हैं धुन को अनिल विश्वास जी ने, तो यही कुछ कार्रवाई आपने इसमें की है। कम से कम तीन मोड़ तो मैंने महसूस किए इस गीत में।
1: इसमें भी जवाब पर यही हुआ था कि जब फिल्म बन चुकी थी तो चूंकि बहुत ग्रिम फिल्म थी तो ये डिसाइड हुआ कि इसमें कुछ लाइट गाने रखे जाएं।
0: जी,
1: तो इस गाने का जिक्र हुआ कि तौबा तौबा रे मेरी तौबा, एक तो ये भरपूर जवानी उस पर ये तन्हाई
0: मेरी तौबा,
1: और उसमें फिर राजेंद्र कृष्ण जी को मैंने कहा जी कि मुखड़ा तो हो गया
0: जी,
1: अब आप अपनी मर्जी से जो जो भी चाहे लिखिए
0: जी।
1: और मैंने उस मूड को समझ कर जो भी उन्होंने लिखा था उसको कंपोज मैंने किया।
0: वहाँ उसको आपको चेंज ओवर करना पड़ा,
1: बहुत उसमें
0: कई अंतरें, बहुत खूबसूरत लंबा गीत है। और बड़ी हैरत भी हुई कि आप जैसे मौसीकार ने एक ऐसी, मैं कहूंगा कि हॉट धुन बनाई कि अच्छे अच्छे नयों को आपने पीछे छोड़ दिया इस धुन में।
1: मैं हॉट गाने बहुत ज्यादा हॉट बनाता हूँ, मगर मेरी कोशिश रहती है कि जैसी फिल्म हो।
0: जी हाँ, थोड़ा मिजाज से, बड़ा फन का ताल्लुक मिजाज से बहुत कुछ होता है, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लगा लेकिन बेहद खूबसूरत है। और हम लीजिए, हम अपने सुनने वालों के लिए इस गीत को अब इस वक्त पेश कर रहे हैं।

0: जयदेव जी, साहिर साहब के साथ आपका काफी लंबा एसोसिएशन रहा है और कई फिल्में आपने उनके साथ की हैं।
1: फिल्में तो मैंने ज्यादा नहीं की उनके साथ, मगर वो मेरे पुराने साथी थे, हम एक ही शहर के रहने वाले हैं
0: जी, लुधियाना,
1: और बहुत करीबी रिश्ता था हमारा
0: जी,
1: बिल्कुल भाई थे हम। और
0: उनके साथ काम
1: कर हम दोनों मैंने फिल्म की उनके साथ
0: जी,
1: मुझे जी
0: ने
1: चार गाने लिखे
0: जी।
1: मेरी पहली फिल्म जोरो के भाई में उन्होंने गजल लिखी थी,
0: अच्छा,
1: सुरमई रात है सितारे हैं
0: जी, जी।
1: आज दोनों जहां हमारे,
0: हमारे
1: हैं, सुबह का इंतजार कौन करे
0: जी।
1: बाद में उनके मरने से कुछ एक दो साल पहले दो फिल्में मैं उनके साथ कर रहा था, मगर बदकिस्मती से उनको हार्ट अटैक्स आने शुरू हुए, वो दो फिल्में
0: मुकम्मल ना हो सकी।
1: वो नक्श साहब ने मेरे साथ की
0: फिल्म, हम दोनों के तमाम ही गीत उन्होंने लिखे और आपने धुने बनाई, बड़े मकबूल हुए, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनमें एक खास कैफियत का हामिल एक गीत लगता है जो मोहम्मद रफी की आवाज में है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो फिक्र को धुएं में
0: उड़ाता चला गया। जरा इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए कि इसका कैसे ये जन्म लिया इस गीत ने और धुन ने।
1: इंटरेस्टिंग किस्सा ये कि साहर, चूंकि हम लोग बहुत करीब थे, तो साहर साहब मुझे अक्सर अच्छे अच्छे शोरा का कलाम सुनाया करते थे।
0: अच्छा,
1: अदम उनके बहुत फेवरेट
0: अब्दुल हमीद,
1: तो अदम साहब की गजल थी कि मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया,
0: अच्छा,
1: मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया, हर्फ कुछ ऐसे था, वो रफ्तार रफ्तार जहां पिलाते चले गए, मैं रफ्तार रफ्तार होश में आता चला गया।
0: अच्छा,
1: तो इसको मैंने कंपोज किया था
0: जी।
1: और जब देव साहब ने इस धुन को सुना, तो उन्होंने पहली पिक्चर मैंने हम दोनों उनके साथ की थी
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा साहब साहब इसी पर कुछ लिखिए। अब सार बहुत मुझ पर परेशान होते थे कि तुम ऐसी चीजें सुनाते हो जिनके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट राइटर था, तो उसने उस फिल्म के कहानी के हिसाब से मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया, वो लिखी लाइन जिंदगी में जिंदगी के साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में
0: उड़ाता चला,
1: चूंकि उसमें एक सिगरेट लाइटर का डाल दिया था,
0: उसमें म्यूजिक है खास, एक धुन आपने छोटी सी बनाई, म्यूजिकल लाइटर है वो, तो इस तरह ये गीत लिखा गया। साहिर साहब से आपने जैसे फरमाया कि आपका एसोसिएशन बहुत पुराना था, गीत निगार की हैसियत से आपकी क्या राय उनके बारे में?
1: साहिर साहब वैसे तो शायर थे और नज़में लिखते थे ज्यादा,
0: गजलें भी लिखी हैं,
1: मगर वो बहुत काबिल आदमी था वो,
0: इसमें दो राय नहीं हो सकती।
1: मुझ पर उनका एहसान है कि उर्दू मैंने उनसे बहुत सीखा, और उस आदमी की एक फोटोजेनिक मेमोरी थी, वो किसी कलाम को पढ़ते थे उसमें जो भी बेस्ट हुआ करता था उनको हमेशा के लिए याद रहे,
0: वो रजिस्टर हो जाता। जयदेव साहब, कई गीतों के बारे में गुफ्तगू हुई और जी तो चाहता था कि ये गुफ्तगू जारी रहे, मगर वक्त की कमी ने मजबूर किया है इस बात पर कि इस प्रोग्राम को हम खत्म करें, लिहाजा इससे पहले मैं एक बार आपको अपने तमाम सुनने वालों की जानिब से इस एजाज के लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं एक बार फिर, जो फिल्म अनकही के लिए आपको मिला, और आपकी यहां आमद पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं उर्दू सर्विस की जानिब से और अपने तमाम सुनने वालों की।
1: आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम, प्यार, दुआ, नमस्ते, जो भी समझ लीजिए।
0: खुदा हाफिज।
2: सामिन भाई, आप सुन रहे थे मारूफ मौसीकार जयदेव के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी ए जब्बार ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश अजान फिल्म का नगमा कैलाश खेर की आवाज में, नगमा निगार इरफान सिद्दीकी, मौसीकार सालिम सुलेमान।

0: जिसमें हक का नूर वो सीना हमें मिले।
1: मरने

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग कर रही है। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयत किए गए 10% महसूस

0: ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लीन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफेन के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। इस बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर भी तवज्जो दी गई। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लीन ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बातचीत की तस्दीक की है। वजीर खाजा डॉ एस जयशंकर ने आलमी इक्तिसादी इस्तेहकाम के एक सुतून के तौर पर भारत के बढ़ते हुए रोल की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने बैन अल-अक़वामी खुशहाली के तई मुल्क की काबिल जिक्र खिदमात को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने सूरीनाम में समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से खिताब में यह तबसरा किया। खारजी उमूर के वजीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि माइग्रेशन से मुतालिक भारत के नजरिए की रहनुमाई, माइग्रेंट्स के तहफ्फुज़, माइग्रेशन करने वालों से मुतालिक जामे हुक्मरानी और मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन के उसूलों से होती है। वजीर मौसूफ ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन में माइग्रेशन के जायजे से मुतालिक दूसरे बैन अल-अक़वामी फोरम के मंदूबीन के सरबराहान से खिताब कर रहे थे। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाई हुरमुज़ से बहरी जहाजों को बहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा। अमरीका के दो अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग कर रही है। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैन अल-अक़वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तेंदी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दा आगाज कर रहे हैं श्री जबान सराइकी दे प्रोग्राम झोक माही दे नाल।

त्रै महीने ते 18वीं डी हाई 35 साल दी उम्र ना लंघा सके भारतेंदु जी, पर इतनी घट उम्र विच ही उन्होंने गद्य पद्य कविता नाटक ते पत्रकारिता नाल जुड़ के हिंदी भाषा दे साहित्य दा नक्शा बदल के रख दिता। बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं वड्डी थीम नी चाहीदी है, एंजा हिक फिकरा यानी डायलॉग 1971 विच आई मशहूर फिल्म आनंद विच आई। कैंसर दे मरीज दा रोल करिंदे वे राजेश खन्ना ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को ए फलसफा दिता है, लेकिन ए फलसफा हिंदी साहित्य दी महान विभूति भारतेंदु हरीशचंद्र उत्ते असलू सटीक बांधे। उन्होंने 34 साल 4 महीने दी उम्र विच ही दुनिया को अलविदा कर दिता, लेकिन दुनिया छोड़न कन्नू पहले ओ अपने लिखत पढ़त आले हिस्से विच इन्ना कुछ कर गए के हैरानी थींदी है कि कुछ भी इंसान इतनी छोटी जई उम्र विच इतना कुछ कीवें कर सकदे। असाकू मालूम होवे या ना, पर ए सच है कि अज दा हिंदी साहित्य जेडे मुकाम ते हुंदी नींव दा हिस्सा भारतेंदु हरीशचंद्र ते उना दी मंडली ने ही खड़ा कीता है। पहली वार आला मुकाम उना दे नाल इतनी वारी जुड़ावा है कि बहुघट लोका नाल ए फिकरा जुड़दा है। ही करके ढिग सारे आलोचक भारतेंदु जी को महान अनुसंधान करता यानी शोध करन आला भी मनेंदे हन। भारतेंदु जी ने नवी नवी विद्यावां विच ते लिखत ही नालो नाल ओ साहित्य विच नवे मजमून भी घिन के आए। ही करके भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य विच नव जागरण दा अग्रदूत भी मन्या वेंदे। उन्ना कन्नू पहले हिंदी साहित्य विच मध्यकाल दी प्रवृत्तियां मौजूद हन। ही वास्ते उन्ना कलू पहले दा साहित्य दुनियावी जरूरता नाल असलू अलेदा है। साहित्य दा पूरा माहौल प्रेम मोहब्बत भक्ति ते अध्यात्म पासे है। भारतेंदु जी ने अपनी लिखित दी कोशिश नाल हिंकु पूरी तरह तब्दील कर दिता। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य दी भारतीय संस्कृति दी खूबियां को शामिल करेंदे वे पश्चिम देशां दी भौतिक ते वैज्ञानिक सोच को भी अपनी लिखत दे नाल शामिल कीता। भारतेंदु जी दा वेला भारत देश दी गुलामी दे नाल मध्यकालीन सोच दी जंजीरां विच कैद है। भारतेंदु जी दी लिखत ते भारतीय ते पश्चिमी देशां दी सोच दा रलिया मिलिया असर है। उन्हां ने अपनी कलम नाल अपनी संस्कृति अपनी तहजीब ते भाषा करके प्रेम नाल एक अलेदा अलख एक अलेदा भा बालन दी कोशिश कीती। 9 सितंबर 1850 विच उत्तर प्रदेश दे मशहूर धार्मिक शहर वाराणसी विच भारतेंदु जी दा जन्म थिया है। हुं वेले भारतेंदु जी दे लाला जी वैश्य परिवार नाल तालुक रखेंदे हन ते गोपाल चंद्र नाम है। पिता जी गोपाल चंद्र भी अपने दौर दे मशहूर कवि हन ते गिरधर दास नाम नाल कविता लिखदे हन। 1857 दे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दे वेले भारतेंदु जी दी उम्र तकरीबन 7 साल है। ए उना दी अखी खोलन दा वेला है। भारतेंदु जी दी लिखत गवाह है कि एक वारी अख खुलन दे बाद बंद कहना थई। भारतेंदु जी दे वड्डे वडेरे अंग्रेज भक्त हन, उना दी मेहरबानी करके ही ओ रहीस थिए हन। हरीश चंद्र जी दी उम्र 5 साल है ते भाभी भगवान को प्यारी थी गई है ते 10 साल थींदे थींदे पियू उम्र लंघा के परमात्मा कोल चले गए। निक्के लातू ही लाला भाभी दे प्यार नाल महरूम रह गए। मतरई मां बहु जुल्म करेंदी है, जिवें तिवें स्कूल दी पढ़ाई पूरी करेंदे रहे। कई बारी पढ़ाई नाल मन उखड़ा भी दिमाग बहु तेज है। क्वींस कॉलेज बनारस विच दा दाखिला गिद्दा 3-4 साल कॉलेज आंदे वेंदे भी रहे, पर हां हर वारी इडे उडे भजदा रहा। कुछ भी समझन ते याद करन दी काबिलियत बहु तेज है। ही करके हर साल इम्तिहान विच पास थी वेंदे हन। बनारस विच हूं वेले मशहूर लिखारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बहु वड्डा ना है। भारतेंदु एक सच्चे शागिर्द वांगू उना कोल वेंदे हन ताकि उन्हें कोल अंग्रेजी भाषा दी तालीम मिल सके। अंग्रेजी दे नाल अपनी कोशिश नाल ही भारतेंदु जी ने संस्कृत मराठी बंगला गुजराती पंजाबी उर्दू भाषा विच भी महारत हालस कर गिद्दी। कविता लिखन दी काबिलियत भारतेंदु जी को अपने पियू करके ही हासिल थई है। 5 साल दी उम्र विच ही उन्होंने एक दोहा लिख

के पियू को सुनाया हाई ते पिता जी ने सु कवि थीवन दी दात दित्ती। तकरीबन 15 साल दी उम्र विच भारतेंदु जी ने साहित्य सेवा शुरू कर दित्ती। 18 साल दी निक्की जी उम्र विच भारतेंदु हरीश चंद जी ने हिक रिसाला कवि वचन सुधा नाम नाल शुरू कीता। हूं वेले वड्डे वड्डे मशहूर लिखारी दी रचनावां हूं रिसाले दी शोभा वधेंदी हन। 20 साल दी उम्र विच इन्हां को ऑनरेरी मजिस्टर दे रुतबे नाल नवाजा गया। 1868 विच कवि वचन सुधा दे बाद 1873 विच हरीश चंद्र मैगजीन ते 1874 विच त्रिमितियां दी शिक्षा वास्ते बाला बोधनी रिसाला कढ़ना शुरू कीता। नालो नाल कुछ साहित्यक जलसे ते कठ भी करेंदे रह गए। वैष्णव भक्ति दे प्रचार वास्ते भी तदीय समाज स्थापित कीता। राज भक्ति ते देश भक्ति दी भावना होन करके भारतेंदु जी को अंग्रेजी हकूमत दी नाराजगी दा भी सामना करना पिया। हरीश चंद जी मशहूरी ते काबिलियत दा लूहा मनेंदे वे काशी दे वड्डे दानिशमंद लोगां ने 1880 विच इने को भारतेंदु जी दी सिफत नाल नवाजा। भारतेंदु यानी भारत दे इंदू ते इंदू यानी चंद्रमा यानी भारत दा चंद्र। हिंदी साहित्य विच भारतेंदु हरीश चंद जी दी देन भाषा ते साहित्य दोवे पासे है। भाषा दे क्षेत्र विच उन्होंने खड़ी बोली को तवज्जो दित्ती। जेड़ी उम्र कनू अलेदा है ए हिंदी इलाके दी रली मिली बोलियां दा रूप है। खड़ी बोली विच ही भारतेंदु जी ने अपने सारे गद्य साहित्य दी लिखत पूरी कीती है। हिंदी साहित्य विच भारतेंदु हरीश चंद जी दी देन भाषा ते साहित्य दोवे पासे है। भाषा दे क्षेत्र विच उन्होंने खड़ी बोली को तवज्जो दित्ती। जेड़ी उर्दू कनू अलेदा है ए हिंदी इलाके दी रली मिली बोलियां दा रूप है। खड़ी बोली विच ही भारतेंदु जी ने अपने सारे गद्य साहित्य दी लिखत पूरी कीती है। अपनी लिखत दे नाल भारतेंदु जी दी समाज सेवा भी चलदी रही। ढेर सारी संस्था कठ जलसे दी बुनियाद रखेंदे वे गरीब दीन दुखी ते साहित्यकार बोली दी मदद करेंदे रहे। अज दी तारीख विच जित्थां भी हिंदी भाषा या मां बोली दी तरक्की दी गाल थींदी है उत्थां भारतेंदु जी दा हिक दोहा सारिया दी जुबान ते मिलदा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ना हिये के शूल। दोहे दे मायने हैं मां बोली मातृ भाषा दी तरक्की दे बगैर कोई भी बिरादरी या समाज दी तरक्की मुमकिन कैनी ते अपनी भाषा दे ज्ञान दे बगैर मन दी पीड़ा को दूर करना भी मुमकिन कैनी। भारतेंदु जी दी कविता पाठ सुनन वास्ते दूरों दूरों तो विद्वान लोग आंदे हन ते खूबसूरत चेहरे दे नाल उना दी मनमोहक वाला दी लट देख के खुश थींदे हन। भारतेंदु जी एक वड्डी शख्सियत दे मालिक हन। भारतेंदु जी एक वधिया कवि लिखारी नाटककार ते हन ही नालो नाल तकरीर करण आले तर्जुमेकार पत्रकार देशभक्त भी हन। सारी भाषा दे जानकार ते ए हन ही नालो नाल भी डेक सारी लिपि विच भी ए लिख गिंदे हन। एक भी गाले वी नाल के भारतेंदु जी इतने वधिया आशु कवि हन के उन्होंने एक डी विच ही अंधेर नगरी चौपट राजा पूरा लिख गिदा ता शतरंज देवी शुकीन हन। इन्हां दी लिखी भी मझाइयां रचनावां को ही गल को साबित करेंदी हन के भारतेंदु जी दी लिखी मझाइयां लिखत विच उन्हां दा व्यंगे करन आला अंदाज बहु ही उच्चे दर्जे दा है। उन्होंने सिर्फ 35 साल दी उम्र विच इतना लिख दिता कि कई लिखारी 70 साल दी उम्र विच भी इंजा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। भारतेंदु जी बारे एक गाल ए भी खास है कि हिंदी भाषा विच नाटक लिखन दी शुरुआत भारतेंदु जी ने ही कीती है। भारतेंदु जी लिखदे वेले खास रंग दे कागल दा इस्तेमाल करेंदे हन। आड़ितवार यानी एतवार को गुलाबी सोमवार वाले दिन चिट्टा मंगलवार को लिखदे वे लाल रंग बुधवार वाले दिन सावा रंग दा कागल इस्तेमाल करेंदे हन। वीरवार को पीला शुक्रवार चिट्टा ते छनछनवार नीले रंग दे कागल ते लिखदे हन। भारतेंदु जी ने जितने

0: भी मौलिक नाटक लिखे, उन्हें विचू अंधेर नगरी चौपट राजा दा जिक्र ना थी वे, ए ते थी ही नहीं सकदा। 1881 विच ए हास्य नाटक जेंदे विच छी दृश्य हैं, एक रात दे वक्फे विच ही लिख दिता है। चौपट राजा दे मायने किथई ना किथई अंग्रेजी हकूमत नाल भी हन। नाटक विच हिरस को छोड़ के समझदार बनन दी नसीहत है। अंधेर नगरी नाटक दी ए गाल बहु गौर करण वाली है कि जेड़े इलाके विच अच्छाई बुराई दा कोई फर्क कैनी, उत्थां दी शोधी जनता बादशाह दी मूर्खता विच फसी रांदी है, अंत विच कूड़ ते सच दी जीत थींदी है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक ते मशहूर है ही, भारतेंदु जी दे बेवी मौलिक नाटक हैं। सत्य हरिश्चंद, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा नाटक दे अलावा उन्हें दे लिखे वे निबंध संग्रह स्कूल कॉलेज दी किताबा विच पढ़ाए वेंदे हन। काशी बादशाह दर्पण, बद्रीनाथ दी यात्रा, कुछ खास काव्य रचनावां दी लिखत दा हवाला ए वी नाल कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, होली, राग संग्रह, बकरी भारतेंदु जी दी लिखत विच उना दी आत्म कथा, हेक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती भी लाजवाब है। भारतेंदु जी दे हेक नहीं कई उपनाम भी हन, कोई इने को आधुनिक हिंदी दा पिता मा अखेंदे ते कुछ लोग नव जागरण दा अग्रदूत अखेंदे हन। भारतेंदु जी गजल लिखदे वे रसा तखल्लुस दा इस्तेमाल करेंदे हन। महान लिखारी भारतेंदु जी को यश इज्जत हौसला अफजाई सिफत पत्र वड्डे वड्डे मान सम्मान ते ढेगवारी हासिल थे, पर आखरी वेले किस्मत विच बहु दुख झेलना लिखा वा है। आखरी वेले भारतेंदु जी को टीबी बीमारी नाल रूबरू थीवना पोया। हूं बीमारी करके ही 6 जनवरी 1885 विच राती पौने 12 बजे भारत दे ही चंद्रमा ने अखीरला सा गिद्दा। 35 साल दे जवान लिखारी ने अपने 17 साल दे निक्के वक्फे विच 175 हिंदी भाषा दे महान ग्रंथ लिख के हिंदी साहित्य को उच्चा मुकाम दिता। अपनी लिखत नाल भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा दे साहित्य दे खजाने विच बेशकीमती जेवरात जो नाटक कविता सफरनामा नज़्मो नस नाल जोड़े हन। एंजे खजाने वास्ते हिंदी भाषा नाल प्यार करण आला हर शख्स भारतेंदु जी दा हमेशा वास्ते कर्जदार रहसी। भारतेंदु जी दा ना हमेशा हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आदर नाल गिद्दा वैसी। एंजे महान लिखारी दे श्री चरणा विच असाडा लख लख वारी पेरण है। हुणे आप सब सुनदे पए हावे एक वार्ता भारतीय नव जागरण दे अग्रदूत भारतेंदु हरीश चंद्र।
1: मैं रीना कौल आप सबको राम राम ते नमस्ते करेंदी हाँ। अज मैं हाजिर हाँ आप सब दे सामने सिराई की सूफी संगीत दा एक प्रोग्राम घेन के। ओ सूफी संगीत जेडी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है, ते उम्मीद करेंदी हाँ तो आपको ये प्रोग्राम पसंद हो सी। मैं मंगती

0: ओ काली चल रहा है ओए कालू पढ़ने के से मर गया ओए कालिया
1: आया चौधरी जी उन्हें आया

जी सामी ने सी झलकी चौधरी शादी लाल। उम्मीद है कि तुहानू जरूर पसंद आई होएगी। तो हुण वधदे हां जी अगले सिलसिले वल। अगला सिलसिला है सूफी रंग। सूफी रंग दे तहत अज साईं बुले शाह दा कलाम वख-वख गुलकारां दी आवाज़ दे विच।

0: सारे सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल के विचकार है तो महीनावार अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: हां जी रुलिया राम जी लंघ आई है।
3: आजू शिंगारा सिंह जी आजू बच्चों नू आजू।
2: जय हिंद जी रुलिया राम जी। जय हिंद
3: जय जी जय जी। शिंगारा सिंह जी बच्चों नू की हाल चाल है तुहाडा?
2: हाल चाल तगड़े ने वल ने। तुहां सुनाओ।
3: जिदा कहंदे आ ना बचा च बचा कहन नू बड़ा जिदा कहने के बड़ा आराम ना बंदा कह हो दिंदा है पर जे किते ते अमल हो जे बहुत सारिया घटनावां ते बहुत सारिया दुर्घटनावां इन्हां तों तुसीं बच जांदे।
2: सही गल आ।
3: हुण देखो आम जिंदगी दे विच विचरदियां घरेलू पद्धर दे उत्ते समाजिक पद्धर दे उत्ते जे आपां बोलण दे विच बचा जिहड़ा भी बोलीए सोच के बोलीए विचार के बोलीए ते कई वारी गल जिहड़ी है बिगड़दी बिगड़दी संभल जांदी है।
2: देखो गल भी सियाने भी कहंदे आ भी लम्मा धागा ते लंबी जबान ये समेट के रखो।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: नहीं तां इच हड्डी नहीं हुंदी हड्डियां तड़ा जरूर दिंदी है।
3: हां सो इह लपेट के रखने बड़े जरूरी है। दूजा पक्ष इह आ जांदा है
2: जी
3: हुण अज आवाजाई देखो साढ़े साधन इन्ने ज्यादा हो गए
2: जी
3: ते साधना दे करके आवाजाई भी वध गई।
2: हां सही गल
3: आवाजाई वधन करके आवाजाई दे विच

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਚ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਹੈ, ਪਲੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਲਿਆਓ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਜ ਕਰੋ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆਓ 5 ਕੁਇੰਟਲ, 10 ਕੁਇੰਟਲ, 15 ਕੁਇੰਟਲ ਜੋ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਪੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਡੱਬੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,
0: ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਦਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੈ.
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਜਿਹੜੀ ਉਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ.
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 100%. ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ.
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे. कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया. श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया.
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं. उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है. इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ.
2: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा. तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है. 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है. 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी. केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं. यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है. वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी. निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है. सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए. इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे. राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के

0: प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारा राम राम।
1: देखिए भाई, गर्मी का मौसम है और गर्मी में शरीर को ठंडा रखना और हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली जरूरत होती है कि पानी। तो कहा जाता है कि भाई रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारी जो शरीर की उसमें पानी की कमी ना होने पाए और हम तरोताजा रहें। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल कीजिए, जैसे नींबू पानी है, आम पना है, बेल का शरबत है, लस्सी है, पुदीने का सेवन कीजिए, जो कि हमारे शरीर को ठंडक देते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है सत्तू को घोल बना करके उसकी पीजिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और तरावट अपने शरीर में बनाए रखता है। और खास करके आपने फलों की भी बात की है, तो फल की हम बात करें तो तरबूजा है, खरबूजा है, देखने में लाल और खाने में स्वादिष्ट। और साथ ही साथ खरबूजे की बात करें, खीरे की बात करें, तो पानी की कमी को वैसे ही पूरा कर देता है।
1: बिल्कुल, और देखिए खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, पालक, पुदीना, तमाम तरह की ऐसी गर्मियों में हमें प्रकृति ने मौसम के अनुसार ऐसी चीजें दी हैं जिससे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है कम ना हो पाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। और नई नई डिशेज अगर हम इनकी बनाते हैं तो भाई एक ये भी रहता है कि जब बदलाव होता है ना खान पान में, तो उसका भी आनंद आता है कि एक तरीके के भोजन से जैसे बोर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ है जिनका सेवन आप कर सकते हैं। तो अगर बेल के शरबत की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इसकी तो तासीर होती है, वो भी ठंडी होती है
0: और पेट के लिए बहुत ही लाभ
1: है। और बाजार में अभी देखेंगे भी आपकी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। जब मौसम के अनुसार हम फल सब्जियों का चयन करते हैं तो हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती है, हमें वाजिब दाम में वो बाजार में उपलब्ध भी हो जाता है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे बड़ा नानुकुर करते हैं कुछ भी खाने में, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ चीजें पसंद नहीं होती, तो जैसे आपने कहा उसका परिवर्तित रूप हम कुछ कर करके पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। तो जैसे आप खाने की बात करें, हरी सब्जियों में बहुत ही तरोई की सब्जी हमें नहीं खानी है, तो हमें भिंडी नहीं खानी है, हमें पालक नहीं खाना, तो ये पालक पनीर खा लेंगे भाई, नहीं कुछ और ऐसा बनाएंगे जो उससे अच्छा बन सके, पालक का कोफ्ता भी बना लेते हैं हम लोग। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बना करके हम उनको खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा।
1: हाँ, और ये भी एक गर्मियों में बाहर की चीजों से परहेज करना बहुत ही जरूरी होता है। इस समय देख रहे हैं कि पेट की गड़बड़ सबकी चल रही है, तो जो भी खाना है आप घर पे बनाएं, क्योंकि घर पे हम उसे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। बाहर तो

0: का क्या होता है, अगर हम मान लो फ्रूट चाट भी खा रहे हैं तो उसमें भी कप का कटा हुआ है वो कैसा है, उसमें मिर्च मसाला डला है, मक्खियाँ भी भिन बनाती रहती हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप घर पर ही ला के और स्वच्छता के साथ उसे काट धो लें पहले और फिर काटें और फिर उसका सेवन करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर पहले से कटी फटी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो अपने खान पान का रखें ध्यान और मिर्च मसाले का कम से कम प्रयोग कीजिए इस समय। और जैसे रात के समय में हल्का खिचड़ी का या दलिये का सेवन आप करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
1: कुल मिला के ये कहना चाह रही प्रियंका कि गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, तली वाला पदार्थ बिल्कुल ना खाएं, पिए बाहर की चीजें कटे फटे फल पर बिल्कुल ध्यान न दें, उससे ना खाएं, घर में लाएं अच्छे से धोएं फिर खाएं। और रही बात खान पीन की, जब हम अपना खान पान अच्छा रखेंगे स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल। और देखिए अनाज की बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हम मौसम के अनुसार करते रहना चाहिए। अब तो देखिए रागी का डोसा भी बना सकते हैं और बाजार में
1: बिस्किट है, बहुत सारी चीजें बन रही।
0: अब देखिए इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा है। जहाँ पे मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो उसे खाने में तो वो पौष्टिक है, इसलिए अन्न का नाम दिया गया है, लेकिन उसको उगाना भी कहते हैं कि भाई ये बंजर भूमि में भी हो जाता है और देखभाल की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। और अब तो जब से मिलेट वर्ष पूरे साल हमने मनाया तो उससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एक फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी परंपराओं की तरफ लौटें और अपनी थाली में से जगह दे रहे हैं, क्योंकि इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत ही अधिक है। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे काफी हट्टे कट्टे होते थे और अभी हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ही जान नहीं है, क्योंकि हम अपनी परंपरा से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी पुरानी चीजों को एक बार फिर से नए तरीके से आप उसे नई नई डिशेस बना के अगर बच्चों को भी खिलाएंगे तो आदत तो उनकी अभी से बन जाएगी, तो फिर वो भी धीरे धीरे उसका स्वाद लेंगे।
1: कुल मिला के ये भी कहना चाह रही प्रियंका कि कम लागत में अधिक मुनाफे वाली चीज खेती बाड़ी हम कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और रही बात कि श्री अन्न की बात, तो उसमें थोड़े से बदलाव, जैसे आपने कहा आटे की रोटी की बात होती है, हम लोग रोटी भी खाते हैं, लेकिन रोटी जो हम खाते हैं सिर्फ आटे का अगर खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा रागी, और अगर समय देखें तो तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो उसे ना मिलाएं, और थोड़ी सी ये मक्के के साथ और रागी के साथ थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना, उसका भी थोड़ा सा सत्तू मिला ले तो बहुत ही मिस्सी रोटी, स्वादिष्ट मिस्सी रोटी तैयार होगी। आप उसे जब खाएंगे चाव से तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और पाचन तंत्र भी आपका सही रहेगा।
0: बिल्कुल। और अब श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज में ये उपदेश।

0: जय प्रकाश शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना ये उपदेश। और प्रियंका, आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो भारत सरकार की एक विशेष परियोजना है जिसका उद्देश्य है उन्नत तकनीकों, बेहतर बीजों, पोषक तत्वों के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल जैसे कि कपास, जूट, गन्ने का उत्पादन बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरकता को पुनर्जीवित करना।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य की जैसे हमने बात की तो चावल, गेहूं, दालें और जो मोटे अनाज हैं और तिलहन का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करना है और साथ ही साथ जो कृषि उत्पादकता में है उसमें सुधार लाना है और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता की जैसे बात की और साथ ही साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा देना है और खाद्य सुरक्षा कैसे हो सके इसे सुनिश्चित करना है। और खास करके जो हम कृषि तकनीक की बात कर रहे हैं तो आजकल देखा जाए तो जो गांव में जो खेती किसानी बाड़ी कर रहे हैं तो पहले जो होता था तो ये हम इस पे मशीन पे नहीं डिपेंड होते थे, वैसे ही हम अपने पुराने प्राकृतिक तरीके से काम करते थे, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कृषि यंत्रों का एकदम चलन है और कृषि यंत्रों के जरिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। खास करके जो नव युवा हैं उनको कहीं बाहर जाके पलायन करने की जरूरत नहीं, अगर वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो शिक्षा ले सकते हैं और कृषि शिक्षा लेकर के अपनी कृषक जो जीवन चल रहा है, जो उनकी एक पीढ़ी आ रही है उसको बढ़ा सकते हैं, उसी में उन्नति खेती कर सकते हो।
1: बिल्कुल यमुना बहन, आपने कृषि यंत्रों की बात की तो सचमुच कृषि यंत्रों से तो कहते ना घंटों का काम मिनटों में होता है और अभी मजदूरी भी इतनी महंगी हो गई है कि अगर मशीन से हम काम करते तो वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ता है। और देखा गया है कि समूह बना के हमारे जो किसान भाई हैं वो मशीनरियों का प्रयोग भी कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। और नई तकनीकों की बात करें तो सिंचाई की जो नई तकनीकें जैसे फव्वारा की विधि है या ड्रिप के द्वारा जो है उसमें कम पानी में भी अधिक उपज ले रहे हैं। इसके साथ साथ मल्चिंग के द्वारा सब्जियों की जो खेती की जा रही है या स्टेकिंग के द्वारा जो बेल वाली सब्जियों की खेती की जा रही है तो उसमें देखा जा रहा है कि जो नई तकनीकों से जुड़ने वाले हमारे किसान हैं वो बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रख रखाव में बदलाव आया है उस तरीके से मतलब सब्जियां जो होती हैं 2-3 महीने में हमें अपनी उपज दे देती हैं और उसकी तुड़ाई भी 3-4 बार हम कर पाते हैं। तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं वो नई तकनीकों का प्रयोग करके अधिक लाभ कमा रहे हैं और सब्जियों की खेती में बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। पारंपरिक खेती में जहां जैविक और सिर्फ सरसों या गेहूं करते थे, तो अगर आपके पास भी छोटी जमीन है तो ये जरूरी है कि आप नई तकनीकों का उपयोग करके सह फसली भी कर सकते हैं जिससे कि आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो नई नई तकनीकों का प्रयोग कीजिए और अपनी आय को दुगना कीजिए, यह सरकार का भी लक्ष्य और हमारे कार्यक्रम में भी हम अपने

0: श्रोताओं से यही बात करते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सोंधी मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हमारे किसान न हो तो हमारी थाली में भोजन नहीं आ सकता है, तो रुपए पैसे खा करके तो काम चल नहीं सकता प्रियंका। तो खेती किसानी जो हमारे जुड़े हुए हमारे किसान लोग, उनके लिए हम यही चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक लाभ पाएं और अपने खेती किसानी से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ी को भी उससे जोड़ें और कृषि जो यंत्र है उसका सदुपयोग करें और सरकार जो योजनाएं बना रही है उसका पूरा पूरा जागरूक होकर के लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं अतुल कुमार की आवाज में आपको ये रागनी।

0: अतुल कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश।
1: भाई धरती की तो विशेष भूमिका होती है खेतीबाड़ी में, और अगर अभी फसल कटाई के बाद खेत खाली हो गए और खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे ताकि सूर्य के तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे हुए कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं, और उसके बाद आप खेत की तैयारी कीजिए और हरी खाद आप बो सकते हैं जिसमें कि ढेंचा, सनई, लोबिया इत्यादि आप बो सकते हैं, और इसके लिए आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। और इससे फायदा ये होता है कि हरी खाद 40 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाती है और इसे हम मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि हमारी जो मिट्टी होती है उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है और उसमें पोषक तत्वों की फिर हमें कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हरी खाद से ही उसमें काफी तत्व जो उसमें मिला दिए जाते हैं उससे हमारी जो भूमि होती है वो भुरभुरी हो जाती है और काफी उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, और टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में अगर देखें तो फलों के फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान में देखें तो किसान खेत में जो है अच्छी बसेरा लगाएं और वे कीट नष्ट करने के लिए फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें, साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें, और साथ ही साथ देखें तो यदि कीट की संख्या अधिक हो तो एक तरीके से छिड़काव करना होता है बीटी 1.10 की बात करें तो पानी की दर छिड़काव करें, फिर भी प्रकोप अगर अधिक हो तो 15 दिन बाद उस कीटनाशक दवा डालें। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फसल होती है उस पर विशेष ध्यान देना होता है जिससे जो हमारी खेती किसानी हो फलती फूलती रहे और अच्छा हम उत्पादन पाते रहे।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई रखें इन सब बातों का ध्यान, और अब आपको सुनवाते हैं प्रवीण कुमार की आवाज में ये राग।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार की आवाज में ये रागनी।
1: बिल्कुल, और चलते चलते अपने कार्यक्रम का हम पता बता देते हैं। पहले ईमेल का है feedback@gmail.com और जो हमारा पत्राचार का पता है कृषि एवं गृहकांश कमरा नंबर 610 नौ प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली पिन कोड है 110001। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है तुषार बारा सर और कार्यक्रम के संयोजक है
0: शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

श्रोताओ, जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं भूपिंदर की आवाज में एक और गजल।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ हमारा गजल कवाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओ, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मैराथन में विजय रही प्रतिभागी ने अपने विचार साझा किए।
6: मेरा नाम भूमिका वार्ष्णेय है। मैं अभी डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हूँ CISF में और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मैराथन में पार्ट लेके, और बहुत ही यूनिक डिस्टेंस था 3.5 किलोमीटर का, जिसको मुझे करने में बहुत मजा आया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जो है इसमें प्राइज भी मिल गया, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का उद्देश्य स्कूलों में मौजूद कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। यह निर्णय रूपनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के बाद लिया गया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर पेयजल, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं सहित शैक्षणिक की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के विकास मंत्री और करावल नगर से

0: विधायक कपिल मिश्रा ने आज सोनिया विहार में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र में तैयार लिंक गलियों का भी लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और सभापुर में भी जल्द यह परियोजना शुरू होगी। इससे जल भराव और गलियों की समस्या दूर हो जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक और पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, पुस्ता सड़क को बेहतर बनाने और क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख ध्यान बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में वृद्धि करने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सामुदायिक जागरूकता, जानमाल का नुकसान रोकने के लिए आसान कार्यक्रम तथा आवश्यक राहत और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 14 आरोपियों को गीता कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ऑनलाइन नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम और हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 8 करोड़ से अधिक रूपये की ठगी के लिंक सामने आये हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 18 मई से 5 जून तक 4 यातायात प्रशिक्षण पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रोड रडार मिशन के अंतर्गत दिल्ली की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना सड़क सर्वे कर एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करेंगे। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने आज शाहदरा के रामनगर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं का जायजा लिया। उप महापौर ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इससे विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया को करीब से समझा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर, अभिलेखीय दस्तावेजों और शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का अवलोकन किया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में

0: गर्मी की छुट्टियों और एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना होगा। प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर आज दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री वाही ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, झुग्गी, बस्तियों और धर्मस्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हर 15 दिन में नियमित कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति धीमी रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में आईटीओ, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय विमान कंपनी इंडिगो इस वर्ष 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से किसी विमान कंपनी की ये पहली उड़ान सेवा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश भर के 16 से अधिक शहरों से सीधी उड़ान के माध्यम से जोड़ेगी। इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद महानगरों के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी। ये उड़ान लखनऊ से सवेरे 7:05 पर रवाना होकर सवेरे 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। नोएडा से बेंगलुरु के लिए भी पहली उड़ान शुरू की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की परिकल्पना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विचार विमर्श और परस्पर समझ को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। युवा संगम शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समग्र और जनकेंद्रित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
3: हाल के वर्षों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। यह समानता और सभी लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुलभ कराने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मविश्वास से भरे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च स्तरीय अस्पताल इकाइयों पर बोझ कम करने और स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास

की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन वृद्धावस्था के दौरान लोगों को निर्बाध मासिक आय प्रदान करती है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक आवाजों का सुनहरा सफर, रेडियो नाटक। शोध, आलेख, स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी। ये रूपक उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अभिनय प्रतिभा से रेडियो नाट्य विद्या को निखारा और पल्लवित किया, और हम इसे उन सभी श्रोताओं को भेंट कर रहे हैं जो हमारे नाटकों को सुनते आ रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब रेडियो नाटक देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तब मनोरंजन का प्रमुख साधन वो नाट्य मंडलियां हुआ करती थी, जिनके प्रभाव से रेडियो नाटक भी अछूते नहीं रह सके। इनमें पारसी रंगमंच, नौटंकी और अन्य लोक शैलियां शामिल हैं।
2: देवी, मेरी तपस्या में आखिर कहां कमी रह गई? आज मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ?
3: महाराज, अब आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ?
4: अपने मुंह से भला अपनी कैसे कहूँ, अपने मुंह से भला

0: शुरू शुरू में किसी भी नाटककार से रेडियो के लिए नाटक लिखवाना कठिन था, क्योंकि उनकी राय में ऐसा कोई नाटक हो ही नहीं सकता था जिसमें शुरू से आखिर तक बातचीत ही बातचीत हो और सुनने वालों की समझ में ये ना आ सके कि ये बातचीत हो कहाँ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आया जब रेडियो नाटक श्रोताओं को न केवल समझ आने लगे बल्कि उनकी रेडियो नाटकों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। आकाशवाणी के जाने माने कलाकार श्री नीरज शर्मा।
1: देखिए, रेडियो नाटक वो फलसफा है जो हमें जीने का पूरा सिद्धांत सिखाता है। हम जो नहीं हैं, वो बनकर जी सकते हैं। और एक बड़ी खास बात है, आप फिल्म देखिए, टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए। फिल्म देखने के लिए आपको कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, टेलीविजन देखने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टेलीविजन की साउंड ऑफ कर दीजिए आप, पिक्चर कितनी देर देख लेंगे, लेकिन रेडियो के जब आप ऑन करेंगे और उस पर नाटक आ रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रही हो महिलाएं, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो आवाज उनके कान

0: पड़ेगी, उनको सब सुनाई देता रहेगा। तो रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और नाटक उसका जीवन है, उसका प्राण है, जिसको हमने कोशिश की हम लोगों ने जीवंत रखने की और आगे भी रखेंगे।
1: आदिकाल से ही नाटक, जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है, भारत में प्रधान कलाकृति के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन इस शास्त्र के साथ साथ रेडियो नाटक के अलग अस्तित्व को स्वीकार करना किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए आसान नहीं था। शुरू में बम्बई और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों से कभी कभी नाट्य कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उनमें श्रोताओं को उस समय के जाने पहचाने रंगमंचीय कलाकारों द्वारा रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत मराठी, गुजराती, बंगला, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय रंगमंचीय नाटकों के अंश ही सुनने को मिलते थे।
2: मैं कुछ अधिक ही बलहीन हो रहा हूँ, आखिर मैं प्रजापालक हूँ, ये मुझे शोभता नहीं है। लक्ष्मण ले आओ।

0: दिल्ली रेडियो स्टेशन में रेडियो नाटक का सही और पुख्ता स्वरूप नजर आया सन 1940-41 में, जब उर्दू और हिंदी के जाने माने नाम सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्रनाथ अश्क यहाँ के स्टाफ में शामिल हुए। उन दिनों कृष्ण चंदर और सादत हसन मंटो आकाशवाणी के ड्रामा एकांश में काम करते थे। शुरू में नाटकों का लाइव प्रसारण होता था। इफेक्ट्स के लिए नाटक स्टूडियो में पर्दे लटके होते थे, बीचों बीच एक पंखा लगा होता था और भी कुछ उपकरण लगे होते थे, क्योंकि नाटक लाइव प्रसारण होते थे इसलिए सभी तरह के इफेक्ट्स भी उसी समय तैयार करने होते थे, चाहे वो घोड़े दौड़ने का हो, हवा आने या तूफान आने का। उन दिनों इफेक्ट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट्स स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे।
1: पहले जब रेडियो नाटक लाइव हुआ करते थे, तब की कुछ बातें मुझे याद हैं, मैं सुनाता हूँ। एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तीन कैरेक्टर थे उसमें। दो कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी आपस में। बात करते करते किसी झोंक में एक कैरेक्टर, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, ये कहता हुआ एग्जिट मार गया। पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे, उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा है, मैं क्या करूंगा। अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है, और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आगे तीन चार पेज लंबा सीन था। अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए, अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहां रह गई, देखें कहां है। हाँ हाँ ये रखी है, इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था, हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज की कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9 और 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे।
0: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता, कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके। शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है। रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं, चित्रों का निर्माण कर रहे हैं।
1: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है, समझ में आ जाए तो बात क्या बात है, बहुत मजा रहता है। असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 बजे नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे, तो आमतौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे। तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने शब्द चित्र बन गया। यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए, चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे।
0: जब रेडियो नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है, इस बात का खास ख्याल रखना होता है। नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक 3 खामोश औरतें का एक अंश।
2: क्यों बहन, सुनी थी आपने इस खामोश औरत की बातें? माफ करना बहन, मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था।
3: नहीं भिन्नो, इसमें माफी की क्या बात है?
2: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी?
3: खंडवा।
2: खंडवा? तो आप खंडवा जाएंगी? ये खंडवा कहाँ हुआ?
3: झांसी के पास।
2: झांसी के पास, अच्छा। आपके साथ कौन है?
3: मेरा भाई।
2: तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे? बड़े कि छोटे?
3: बड़े भाई।
2: क्या बरस बड़े होंगे आपसे?
3: 2 बरस।
2: और आपका नाम?
3: महमूदा।
2: मेरा नाम शमशाद है।
3: जी अच्छा।
2: आपके भाई साहब का नाम?
3: खान महमूद उमर खान।
2: खान महमूद उमर खान,
3: जी।
2: मेरे भी 2 भाई हैं।
3: अच्छा।
2: एक मुझसे बड़ा, एक छोटा।
0: मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
4: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो कर आ गई हूँ।
0: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपनी यादों को साझा करते हुए।
5: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहां आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके जरिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है जो एक्सपीरियंस है वो सर आंखों पर और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं, तरह तरह के इमोशंस को आप अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी सांसों के ज़रिए जो करने को मिलता है वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हो एक जवान रोल आप कर लेते हैं। आप 50 साल की हैं, आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज़ का खेल है।
0: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवित्री लल्लेश्री पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत, इस नाटक में जेहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जेहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं।
4: ललितत यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा

0: की महान कवित्री। हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्यों में सूफी, सनातन पंथ, इस्लामी सिद्धांत और शैवनाथ सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंधों से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
1: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूं धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार, कभी उस पार पहुंचाया होगा। इसमें चल रहे चप्पुओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
0: अगर रंगमंच या फिल्मों की हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपने यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
2: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गवाह कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। तो एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन्ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थी, वीना जी थी। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था, तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन की रिहर्सल कर रहे थे, तो जरा आवाजें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत जोर से नहीं बोल रहा था, और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले, अरे भाई जोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहां है। तो डायरेक्टर महोदय बोले, पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है। ये बोला सब में ठहाका गूंज गया। एक दफा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था, कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे, और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया लाके दी और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसका रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। तो सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है और माँ आकर उसे चुप कराती है। तो दीनानाथ जी बोले, भाई नीरज ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। तो एक खास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने और कहा, नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कह के मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसे हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे और गोपाल जी अवाक, आंखें बाहर मुंह खुला ऐसे बैठे थे। अब समझ भी नहीं आया कि रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग होगी? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक हो गया? तो दीनानाथ जी बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ? कल टेप खत्म हो गया। गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। अब ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, इतना इमोशनल सीन एक

0: पर जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके, तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े कि तो मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिस्कियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूं कि क्या जमाना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
0: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि सिर्फ आवाज पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है, चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं, चाहे आप कैमरा के आगे जाएं। और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए, मैं कैमरा की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती।
1: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं, पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक वगैरह। मोनोलॉग है स्वगत नाटक। मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है, इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं। इसमें केवल एक पात्र रहता है। आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश।
2: सांझ पड़े लकड़े छड़ी।
3: पन्ना देख कहाँ? हाँ,
4: तुम यहाँ क्या करने आए हो?
3: क्या करने आया हूँ? मैं उस बीज को नष्ट कर दूंगा। उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने, मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
4: तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम तो उसके संरक्षक हो। नहीं, मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी।
1: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है, इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं। पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गद्य नाटकों की अगर हम बात करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है, हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश।
5: मैं काल हूँ, पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य।
6: नहीं पहचाना? अरे, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूं, इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? कुछ से कहीं अधिक असाधारण, कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं, अर्थात कल्पना का ईश्वर, मेरा ईश्वर।
1: जाने माने कलाकार और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्को अपनी यादों को बांटते हुए।
7: मैं काफी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है,

0: अलग अलग विभिन्न माध्यमों में, टीवी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, सबसे जुड़ा हूं मैं। मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके मिलता है, वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है। ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है, आपको परिपक्व करता है, ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी माध्यम में जाके, चाहे वो फिल्म्स हो, टीवी हो, थिएटर हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ,
2: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन इससे गुजरने पर एक ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है, उसके थ्रू एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ कर के थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नजर आता है वो अलग तरह का है।
1: कई नाटक संगीतमय नाटक होते हैं, जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है, जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीतमय नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
3: साहिबा से मुझे मिलवा।
4: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूँ, जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था। मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल।
3: चल मासी, चल चल।

ये था यादों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुँचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, लता और मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। बात तो बिल्कुल सही कही है, जब मंजिल एक हो और राही दो तो प्यार तो होना ही है। कहते हैं ना, मिल बांट कर रास्ता कट ही जाता है। देखिए, बाधाएं तो आएंगी और उनका हल भी निकलेगा, बस साथी आपका बेहतर होना चाहिए। और इसीलिए जब भी अपनी मंजिल की ओर आप आगे बढ़ें तो अपने साथी का चुनाव हमेशा सही करें और चलते चलें लहरों के साथ, ताकि पता ही ना चले कि दिन है या फिर है रात।

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना साहिब फिल्म से लिया हुआ ये गीत। संगीत था बप्पी लाहिरी का। कहते हैं ना कि जीवन भी एक गाड़ी के ही समान है, जिसमें अगर हम पेट्रोल की बात करें या कहें कि ईंधन आपकी जिंदगी का जो है वो है आपकी ऊर्जा। जितनी ऊर्जा और आनंद के साथ आप इस जीवन को जिएंगे उतना ही मजा आएगा। और देखिए, कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। तो अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो बस धारा में बहते जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर एक न एक दिन वो जरूर आएगा, जब आप खुद ही कहने लगेंगे कि चलती का नाम ही तो गाड़ी है। गाड़ी थम जाने पर जिस तरह से बेकाम हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिंदगी भी है। चलती रहे तो फिर सब कुछ अपना, और जो थम गई तो फिर हर पल बस सपना।
1: Bum macab, bum bum macab, bum bum macab, bum bum macab, bum bum cock cock. Are bum bum cock.

0: श्रोताओं, जितना मस्ती भरा ये गीत है ना, उतना ही मस्ती भरा जीवन आपको अपना जीना है। और इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल के वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। पीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में

0: महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।

में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुर्खियों में इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे शब के 11:30 पर। 11:45 पर कवालियां नश्र की जाएंगी। आज के हमारे फनकार होंगे जाफर हुसैन बदायूनी कवाल और हमनवा। आलमी खबरें शब के 12 नश्र की जाती हैं। 12:10 पर क्लास की मौसीकी के बज में आज आप सुनेंगे सितार पर बजाया हुआ राग शुद्ध सारंग। फनकार होंगे राजीव जनार्दन। आखिरी शब प्रोग्राम के तहत चंद सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं शब के 12:30 पर और 12:50 पर खबरें नश्र की जाती हैं। इसके साथ ही रात के 1 बजे हमारी तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये थी एक झलक आज की तीसरी मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। इसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनशियात की नाजायज तजारत करने वाले बड़े ताजरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मुलविस शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनक़िदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। कल सुबह सरकार के रबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वजरा और बीजेपी के जेर इकतदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि तकरीब रविन्द्रनाथ जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है इसलिए सकाफती परफॉर्मेंस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तमिलनाडु में तमिजागा वेट्री काजेंगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवीके के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद से ये उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीक्यू को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद और असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नीज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने से सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मुदाखला जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के तई काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुकताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जरायम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज करती है जबकि मनशियात की नाजायज तजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूमते हैं।

0: में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपी हरीफ फेंग यू झू को सीधे सीटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफबरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसी के आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती विलानत पर तशवीश का इजहार किया है। इसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैरकानूनी मनशियात की नाजायज आयात करने वाले बड़े ताजरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, आज के हेल्टिप्स में हमारा मौजू है लू से कैसे बचें।
2: जो सुबह जब ठंडे का समय होता है, जैसे सुबह अपना समय जल्दी शुरू कर सकते हैं 5-6 बजे और 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक लू नहीं चलती उस समय तक काम कर लें। फिर 11-12 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक जब वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसमें अवॉइड करें कि आउटडोर डायरेक्ट एक्सपोजर जो है सन का एक्सपोजर उससे बचें, कहीं छाया वगैरह में रहें और शाम को काम कर लें। दूसरे, हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो शरीर हमारा देखिए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फारेनहाइट पे ही सबसे सही तरीके से काम कर सकता है। जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और अच्छा। उसको घटाने के लिए वो उसके पास मैकेनिज्म होता है पसीना आना, तो वो पसीना लाना शुरू कर देता है जिससे कि टेम्परेचर हमारा शरीर का कम होता है। लेकिन इस पसीने के साथ हमारे पानी और नमक सब दोनों की हमारी कमी हो जाती है अगर हम उसको लगातार रिप्लेसमेंट ना करते रहे। लगातार पानी या नमक वाली चीजें जैसे छाछ है, दही की लस्सी है, नींबू पानी है और आपका आम पन्ना है, इस तरीके की चीजें अगर हम लगातार पीते रहें और पानी की हाइड्रेशन की कमी ना हो तो हम लू के प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है कि वो पानी से या नमक से रिप्लेस नहीं कर सकते तो उससे उनका जो शरीर में पानी की कमी होने से जो ब्रेन का सिस्टम होता है जहां पर टेम्परेचर कंट्रोल वो नॉकडाउन हो जाता है, वो खराब हो जाता है और एक बार वो खराब हो गया तो पसीना आना बंद हो जाता है और फिर टेम्परेचर शरीर का लगातार बढ़ता चला जाता है 105, 106, 160 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। उस समय जो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नाक से खून बह सकता है, बेहोश हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, हमारी किडनी फेल हो सकती है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। तो एक तो यही होता है कि हम डायरेक्ट उससे बचे, सीधे सन से बचे। अगर हमें कहीं बाहर जाना भी है तो सिर पे तौलिया वगैरह गमछा वगैरह गांव में होते हैं वो लगे, लगातार थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालते रहें, अच्छा। पानी पीते रहें, छाते वगैरह का इस्तेमाल कर लें जिससे कि सीधा जो है सनलाइट आपके ना पड़े। जहां तक पॉसिबल हो ठंडी जगह पे बैठें और हमेशा लिक्विड्स का जैसे हमने बताया जलजीरा है कोई भी चीज है इनका लगातार सेवन कर। और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में पानी की, एक तो देखिए शरीर हमारे भगवान ने ऐसा बनाया कि हमें सिग्नल अपने आप मिलते हैं,
3: अच्छा।
2: अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगनी शुरू हो जाती है जो अपने आप में
3: एक बड़ी बात,
2: एक इंडिकेशन होता है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरे ये होता है कि किडनी जो है हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि वाटर को बचाती है बाहर से, तो हमारे को पेशाब आना बंद हो जाता है, यूरिन आना बंद हो जाता है। अगर आपका यूरिन कंसेंट्रेटेड होने लगा, बहुत डार्क येलो कर या बहुत कम आने लगा तो इसके मतलब पानी की बहुत कमी है हाइड्रेशन की, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपको लगातार यूरिन आते रहना चाहिए जो कि हल्का येलो या व्हाइट कलर का होना चाहिए, तो ये हाइड्रेशन का तरीका है। दूसरे, एल्कोहल वगैरह ना पिए, कई बार लोग जो है शराब वगैरह का सेवन भी करते हैं या तो वो एक खतरनाक है, जैसे बियर का सेवन करते हैं ये करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो डायुरेटिक का काम करते हैं, हमारे शरीर से फालतू पानी को और बाहर निकाल देते हैं तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो वो चीज ना करें। उसकी जगह जैसे मैंने बताया कि छाछ है, लस्सी है, नाम पन्ना है, इस तरीके के पेय पदार्थ, नारियल पानी है, इस तरीके के पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो अगर हम ये सब, कोई अगर मान लीजिए आप दवाइयां ले रहे हैं

चम्मच चीनी डालिए और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लीजिए, वही हाइड्रेशन का बढ़िया काम करता है। एक लीटर पानी अगर हम लें तो एक लीटर पानी में, जिसको हम ORS का घोल कहते हैं, जो कि हम दस्तों में भी देते हैं, तो एक लीटर साफ पानी में, अगर हमें घर पे ORS घोल रहे तो एक लीटर साफ पानी में अगर ग्लूकोज है तो 4 चम्मच ग्लूकोज, नहीं तो 4 चम्मच चीनी मिला लें, आधी चम्मच नमक मिला लें, चौथाई चम्मच खाने का सोडा मिला लें, और अगर नींबू वगैरह है तो वो निचोड़ लें। ये हमारा ORS का घोल बन गया, और इसको बस पीते रहिए तो सारे शरीर के जितने इलेक्ट्रोलाइट वाटर की सारी कमी पूरी हो जाए।

0: रिलेटिव्स में हमारा मौजू था लू से कैसे बचें। एक्सपर्ट थे डॉक्टर ए के वासने, आप प्रोफेसर हैं डॉक्टर रामनोलोया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मुशायरा।
1: तमाम सामईन का खैर मकदम है, मैं हूं आपका मेजबान खिसाल मेहदी, आदाब कबूल फरमाएं। सामईन, महफिल मुशायरा उर्दू अदब की वो दरख्शां रिवायत है जो न सिर्फ हमारे तहजीबी विरसे की अमीन है बल्कि हमारे जज्बात, हमारी सोच और हमारे इज्तमाई शऊर की तर्जुमान भी है। यहाँ हर शायर अपने दिल की दुनिया साथ लाता है और हर सामे अपने एहसासात को नए माना अता करता है। ये एक ऐसी महफिल है जहाँ लफ्जों की खुशबू फिजा में बसी हुई है, जहाँ एहसासात शेर का पैरहन ओढ़कर दिलों तक रसाई पाते हैं और जहाँ फिक्र फन एक हसीन इम्तिजाज के साथ हमारे सामने जलवागर होते हैं। आज की इस बावकार महफिल में हमें ये सआदत हासिल है कि हम ऐसे मौज़े शोराए कराम की मेजबानी कर रहे हैं जिनके कलाम में जिंदगी के रंग, मोहब्बत की लताफत, दर्द की गहराई और हकीकत की रोशनी झलकती है। यकीनन ये महफिल आपके दिलो दिमाग को एक नई ताजगी अता करेगी और आपके ज़ौक़े सुखन को जिला बख्शेगी। तो सामईन, इस खूबसूरत महफिल को बाकायदा तौर पर शुरू करने का वो लम्हा आ पहुंचा तो हम दावत देते हैं एक ऐसी बावकार, संजीदा और साहिब तर्ज शख्सियत को जिनकी निजामत अपने अंदर वकार, रवानी और दिलकशी समेटे हुए है। आइए, मैं नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ जनाब जावेद मुशीरी साहब की खिदमत में कि वो इस मुशायरे की निजामत की जिम्मेदारी संभालें और महफिल को अपने खूबसूरत अंदाज से बामे उरूज तक पहुँचाए। जनाब जावेद मुशीरी,
2: आज के इस मुशायरे में शरीक होने वाले शोरा के अस्माए ग्रामी इस तरह हैं: डॉक्टर इफ्फत दर्री साहिबा, किरण यादव साहिबा, मोहतरम सलीम काशिफ साहब और नाचीज जावेद मुशीरी। तो आइए आज के मुशायरे का आगाज करते हैं। मैं मोहतरम सलीम काशिफ साहब से इल्तमास करूंगा कि अपनी गजलों से हमें नवाजें।
3: गजल का मतलब पेश खिदमत। कौन ओझल हुआ है मंजर से, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आंख झपकी नहीं है शब भर से। कौन ओझल हुआ है मंजर से, आंख झपकी नहीं है शब भर से। जाहिरी रख रखाव अच्छा है, जाहिरी रख रखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर से।
4: अच्छा है भाई,
3: जाहिरी रख रखाव अच्छा है, बहुत शुक्रिया। जाहिरी रख रखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर से, लोग टूटे हुए हैं अंदर से। फिर ना होती हमें कोई मुश्किल, फिर ना होती हमें कोई मुश्किल, कुछ अगर सीख लेते ठोकर से।
4: अच्छा भाई,
3: फिर ना होती हमें कोई मुश्किल, फिर ना होती हमें कोई मुश्किल, कुछ अगर सीख लेते ठोकर से, कुछ अगर सीख लेते ठोकर से। वो बज़ाहिर तो साथ है मेरे, वो बज़ाहिर तो साथ है मेरे, पर वो मेरा नहीं है अंदर से।
4: अच्छा भाई,
3: वो बज़ाहिर तो साथ है मेरे, पर वो मेरा नहीं है अंदर से। और मेरी किस्मत में सीप है खाली, मेरी किस्मत में सीप है खाली, सबको गोहर मिले समंदर से।
4: अच्छा,
3: मेरी किस्मत में सीप है खाली, सबको गोहर मिले समंदर से। एक छोटी महर की गजल और पेश खिदमत है। जाने तुझसे क्या राबता निकला,
4: जाने तुझसे क्या राबता,
3: जाने तुझसे क्या राबता निकला, दर्द भी तू ही दवा निकला।
4: अच्छा,
5: तू ही दवा निकला।
3: जाने तुझसे क्या राबता निकला, दर्द भी तू ही दवा निकला।
4: अच्छा भाई,
3: दर्द भी तू ही

0: ले दिया ही क्यों था दिल हमको।
1: मेरा दिल तोड़ के बोले दिया ही क्यों था दिल हमको।
0: मेरा दिल तोड़ कर बोले दिया ही क्यों था दिल हमको। कोई उनसे जरा पूछे कहाँ की ये शराफत है।
2: अच्छा है भैया, अच्छा है।
0: कोई उनसे जरा पूछे कहाँ की ये शराफत है। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल, फूल पत्थर में खिल उठा है क्या।
2: फूल पत्थर में खिल उठा है क्या।
0: फूल पत्थर में खिल उठा है क्या। फूल पत्थर में खिल उठा है क्या। प्यार मुझसे उसे हुआ है क्या।
3: क्या
0: फूल पत्थर में खिल उठा है क्या। प्यार मुझसे उसे हुआ है क्या। अपनी जिद से वो कुछ हटा है क्या।
1: अपनी जिद से वो कुछ हटा है क्या।
0: अपनी जिद से वो कुछ हटा है क्या। मेरे बारे में कुछ कहा है क्या।
2: अच्छा भाई,
0: बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में कुछ कहा है क्या। उससे पूछूं तो किस तरह पूछूं। उससे पूछूं तो किस तरह पूछूं। वो मुझे चाहने लगा है क्या।
1: वो मुझे चाहने लगा है
2: क्या।
0: और शेर सुने कि बार बार आ रही है कानों में।
1: बार बार आ रही है कानों में।
0: बार बार आ रही है कानों में। जिंदगी ये तेरी सदा है क्या। पढ़ रहे हो किताब की सूरत।
2: पढ़ रहे हो किताब की सूरत।
0: पढ़ रहे हो किताब की सूरत। मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या।
2: अच्छा भाई, अच्छा,
0: शुक्रिया। पढ़ रहे हो किताब की सूरत। मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या। ऐसा लगता है कुछ सुना मैंने।
2: ऐसा लगता है कुछ सुना मैंने।
0: ऐसा लगता है कुछ सुना मैंने। आपने मुझसे कुछ कहा है क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कुछ सुना मैंने। आपने मुझसे कुछ कहा है क्या। आखिरी शेर, मुझको कब से है जुस्तजू अपनी।
2: मुझको कब से है जुस्तजू अपनी।
0: मुझको कब से है जुस्तजू अपनी। मैं कहाँ हूँ तुम्हें पता है क्या।
2: अच्छा भाई।
0: मुझको कब से है जुस्तजू अपनी। मैं कहाँ हूँ तुम्हें पता है क्या। और एक और गजल, पिछले मौसम का दिखा आज नजारा जाना।
1: पिछले मौसम का दिखा आज नजारा जाना।
0: जब हवाओं से खुला घर का दरीचा जाना।
2: अच्छा भाई।
0: पिछले मौसम का दिखा आज नजारा जाना। जब हवाओं से खुला घर का दरीचा जाना। शेर सुने, तू न बदलेगा कभी तुझ पे यकीन था मुझको।
2: तू न बदलेगा कभी तुझ पे यकीन था मुझको।
0: तू न बदलेगा कभी तुझ पे यकीन था मुझको। ले गया सारा यकीन तेरा बदलना जाना। ले गया सारा यकीन तेरा बदलना जाना। तेरी याद आए तो क्या जाने कहाँ से आकर।
1: तेरी याद आए तो न जाने कहाँ से आकर।
0: तेरी याद आए तो क्या जाने कहाँ से आकर। मेरी आंखों में ठहर जाता है दरिया जाना।
2: अच्छा भाई, अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया। लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने।
2: लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने।
0: लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने। अपनी गजलों में तेरा अक्स उतारा जाना। लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने। अपनी गजलों में तेरा अक्स उतारा जाना। पिछले मौसम का दिखा आज नजारा जाना। जब हवाओं से खुला घर का दरीचा जाना। लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने। लोग हैरत से मुझे तकने लगे जब मैंने। अपनी गजलों में तेरा अक्स उतारा जाना।
4: सामीन, अभी आप किरण यादव साहब को समाप्त फरमा रहे थे। आइए, उनके बाद कुछ शेर मैं भी हाजिर करना चाहता हूँ। एक मतला और एक शेर गजल से पहले, कि ख्वाब देखूंगा तो ताबीरे तलब भी होगी। ख्वाब देखूंगा तो ताबीरे तलब भी होगी। और ताबीर में फिर हद अदब भी। और ताबीर में फिर हद अदब भी होगी। और आप बेकार ही खाइफ है उजालों से इधर। आप बेकार ही खाइफ है उजालों से इधर। दिन के पहलू में ही गुंजाइश शब भी होगी। दिन के पहलू में ही गुंजाइश शब भी होगी। और गजल का मतलब समाप्त फरमाए। अब क्या बताएं आपको किस बात पर खुला।
1: अब क्या बताएं आपको किस बात पर खुला।

0: और ये शेर भी समाप्त फरमाए, हमने खामोशियों को बतीरा बना लिया,
1: बतीरे का इस्तेमाल नहीं है,
0: हमने खामोशियों को
1: बतीरा बना लिया।

0: और शेर समात फरमाए, रुसवा किया जहान में वहशत के शौक ने,
1: रुसवा

0: और शेर देखे, परखा है खूब उसने जो राजो नियाज में,
1: परखा है खूब उसने जो राजो नियाज में,
0: पर

0: और गजल का आखिरी शेर,
1: रोने के जायके से भी वाकिफ नहीं थे हम।
2: आए, आए, आए।

की बरसा ऊपर खुला, ये राज जा के हिजर की बरसा।

0: अब क्या बताएं आपको किस बात पर खुला।
1: बहुत खूबसूरत, मैं तो महव हो गई भाई।
0: एक गजल के चंद शेर और समाप्त फरमा ले।

0: और ये शेर भी देखें, वो जो जिब्रील लेके आए
1: वो जो जिब्रील लेके आए
0: थे,
1: थे।

0: मैं भी आशो बे करबला, मैं भी आशो बे करबला मैं हूँ। और गजल का आखिरी शेर, बस यही है सबब कसारे का,
1: बस यही है सबब कसारे का।

0: समय में समक राशि के बाद आइए इस मुशायरे के मकते यानी मोहतरमा इफ्फत जर्री साहिबा के हुजूर चले और उनसे इल्तमास करें कि वो अपनी गजलों से हमें नवाजें।
1: जी बहुत शुक्रिया जावेद, मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहूंगी। समाज फरमाए, जिंदगी के मेले में उनवान है, जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहूँ आखिर इस कदर झमेले में, तुमसे क्या कहूँ आखिर इस कदर झमेले में, वक्त की दुहाई है अब तो बस जुदाई है, वक्त की दुहाई है अब तो बस जुदाई है, सख्त लाजमानी है, सख्त लाजमानी है सिर्फ लामकानी है, सख्त लाजमानी है सिर्फ लामकानी है, रेत के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, रेत के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है, तुमको जो सुनानी है बात वो जरा सी है, बात वो जरा सी है फिर भी उम्र भर की है, बात वो जरा सी है फिर भी उम्र भर की है, उम्र भर की बातें कब धोघड़ी में होती हैं, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं, दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, दर्द के समंदर में

0: की आजमाइश
1: भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
2: मोहब्बत

0: खंडर हो दिल तो फिर उसमें रिहायश कौन करता है।
1: आ,
0: और शेर खास तौर से देखें।

0: वगर ना यूं भी जर्री पर नवाजिश कौन
1: बहुत अच्छा है,
0: करता है। मोहब्बत में जुनू की आजमाइश।

राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन ने सुनना चाहा था इस नगमे को और पसंद किया था। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने फरमाइश भेजी थी। आसेगांव बाजार से करण रंजित बुनकर ने और सुनना चाहा था टैगोर गार्डन ने दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। मुंतजिर थे छत्रपति संभाजी नगर के राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इंतजार था इस नगमे का कलका से सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज को और पसंद किया था सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीजी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा ने भी। और कुछ और फरमाइशें भी हैं इस नगमे के लिए। मजनू कटेला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा सुनना चाहते थे इस नगमे को। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी क्रिस्टो, रोजी डी क्रिस्टो, विलिस डी क्रिस्टो, शाहरून अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी आप हैं। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से। पिंजौर से एक ईमेल हम तक पहुंचा है इस नगमे के लिए। चलिए आगे नाम शामिल करेंगे। नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्श मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे आप हैं साई नगर अरबी महाराष्ट्र से। इमाम मंजिल बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से हिना सावरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। और इस नगमे को पसंद किया असबा अग्रवाल मंडी टटेरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान ने। नगर निगम वार्ड 28 नाजम मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और बहू रुबीना वसीम और महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी आप है नरगौड़ छत्तीसगढ़ से। सरगुजा मैन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी और डॉली थापा। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बुधराज खोरवाल और भानु प्रकाश और पसंद किया इस नगमे को घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया ने। यवतमाल से अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे और इस नगमे को सुनना चाहा है। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वान कार और पिंकी स्वानकार और आर्यन। जेल रोड शिमला से परमिला अशोक जाटव और संदीप श्याम जाटव। आइए सामने अब सुनते हैं दीदी फिल्म का ये दो गाना। मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी और इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है सुधा मल्होत्रा ने ही। पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। विक्रम कारवासारा, सचिन करवासारा, योगेश और आप हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से और इस नगमे को सुनना चाहा है। ताज मोहम्मद अंसारी और गुलाम साबिर राही और मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मुतालब बाजार से बोलू ठेकेदार, शेख सगीर और शेख वजीर और इसी नगमे की पसंद हम तक आई मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून की जानिब से। बागवा मंजिल छोटी बलिया करजत से नूर आयशा बागवा, इकबाल अहमद बागवा और अखलाक अहमद बागवा और कृष्ण कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव और टुक टुक जाधव जाटव। विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान और अंकित अंकित चौहान और इसी नगमे को पसंद किया। तान बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई से शाहिद अली, इफात फारूकी और बिटिया हिफ्जा अली ने। कर्नाटक गुलबर्गा से ही मोहम्मद रुकुमुद्दीन मंठाल, शबीर बनहाटी और आसिफ इकबाल। अकोर से विनायक बिंडे, श्रीमती मंगला बिंडे और शुभम बिंडे। करणवीर हाउस भोजो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा और करणवीर करण। पद्मा टाकिस निपनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह। रमेश कुमार यादव

माया यादव और कोमल यादव सिमगा छत्तीसगढ़ से, इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी निशा और डब्ल्यू अंसारी, पुरानी भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

निशात प्रोग्राम की अगली पेशकश शमशाद बेगम की आवाज में ये नगमा फिल्म मेरा सलाम से इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है हाफिज खान ने। पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फुलवाले, सदफ इकबाल फुलवाले और विरमगाम सिटी से उस्मान बोरा गुड़िया और शहनाज बोरा और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान अनाज और नवाज शेख और इस नगमे को सुनना चाहा है। मनवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर और अंकित सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती जैनिश गुजराती और लड्डू कुमारी और आदर्श नगर मौलट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा और निवान शर्मा। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग अश्वनी चुग और

चुग गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी और जहरा बेगम अंसारी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु और आतिश। रेडियो लिसनर क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, तहरा परवीन आतिश, डॉ मोहम्मद आसिफ रजा। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव। पहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पुष्प बंछोर, चंद्रकिरण और छाया बंछोर। नवरंग मार्केट शेगांव महाराष्ट्र से लक्ष्मण छिंजुड़के, ऐसा लिखा आपने, रोहनी और गणेश्वरी। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती। और इस नगमे को पसंद किया बंगाली पंजा नागपुर से भारती, प्रकाश राम भरे, वैष्णवी और हर्ष राम भरे, साथ में जाह्नवी भी है। दरूद वरूद से बाबा साहब वरूदे, आदि चर्पी चंद प्रभा वरूदे। और सुना चाहा इस नगमे को उत्तर प्रदेश बांदा से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी और पंचायत बठेना पाटन जिला दुख छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा। बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवे दर्द और उनके अहले खाना। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। सैलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, मनविंदर सिंह पांडा और जीएस रामगढ़िया। विदर्भ अकोट से के संजीव डावेराव, सुनीता डावेराव और डॉ कुस्तूब डावेराव। और इस नगमे को पसंद किया जिला पटियाला पंजाब से नाभा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरब और ज्योति रानी। नथु राम शर्मा, ललित शर्मा और इंद्राज शर्मा, आप हैं मंडी हरजी राम से, हरजी राम मलोट से। राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्ष रमेकर और अक्षर रमेकर। गोकुलधाम राजकोट से मयूर देवर, शरदा और पंकज भी शामिल प्रोग्राम हुए। और रुद्वई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान। सुने सामेन अपनी पसंद का यह नगमा शमशाद बेगम की आवाज में।

आइए सामेन अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना फिल्म मेरे महबूब से। नगमा निगार शकील बदायूनी और तर्ज बनाई है नौशाद ने, पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। फुलौंग निजामाबाद तेलंगाना से वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी, इसम जावेद, शगुफ तांजुम, आप है गुमला झारखंड से, और बल्लारशाह से प्राची सूरज लोंडे और एकलब्य लोंडे, और मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर, पुराना तालाब डुंगरा से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और दुर्भी जोशी, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश, और इस नगमे को पसंद किया। मुंडी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड और निखिल कांगड़ा भी सुनना चाहते थे इस नगमे को, और जुमड़ी तलैया से महेंद्र चौरसिया, गुनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, और इसे पसंद किया। लोहडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी और प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान और कल्पित चौहान, किशन सबकाल, आशा सबकाल, सुनिया विशाल सबकाल, आप हैं स्वास्थ्य नगर बीड शहर से, और रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत जसपुर उत्तराखंड से, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोहांकर, सुमित गोहांकर, कुमारी धानवी गोहांकर परी, और मानेवाड़ा रोड नागपुर से मैंने ये नाम शामिल किया हुआ है दोस्त पहले से, और छत्रपति सामाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और आशी राजेश, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडो कोल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और बेबी प्रियांशी, जमा मस्जिद डिंडवारा से रियाज अहमद अंसारी, आफताब अहमद अंसारी और लुबना अंसारी, दिनेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान,

ईबीकी के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनक्किदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वुजरा और बीजेपी के जेर इकतदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि यह तकरीब राबेंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तमिलनाडु में तमिजागा वेत्री काजागम टीवीके के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवीके के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आरलेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से यह उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नीज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पटन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्समे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाइख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मुआशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाइख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हर एक जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूर दराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि यह मुल्क की मुसल्ला फौज, मकामी बरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मुनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरतहाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मुनशियात की लत लगने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मुनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मुदाखलत जरूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों
से मुनश

आमीन। अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म दूर गगन की छांव में। नगमा निगार शैलेंद्र तर्ज बनाए थे किशोर कुमार ने ही। इस नगमे को सुनना चाहा था आप सभी दोस्तों ने। साईनगर अरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका कालपांडे। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगी वाले, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। लचनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक और निम्मी साहू। प्रोफेसर कॉलोनी दिल्ली से आजमा परवीन, आमना परवीन और नसरीन अंसारी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब और सुब्रत चौधरी। कोलकाता से रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नाजमा बेगम नाज और बेबी फातमा गाजी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और गब्बिया मल्होत्रा और बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत निशु। आप हैं मुक्तसर पंजाब से, गांव डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह। किष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से परवीन हागोने, योगिता हागोने और प्रियाली हागोने। राजावत कम्पलेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत ऋषि रक्षित और भोपाल देवकीनगर से चंपालाल दुबे और आनंद साथ में दर्शित। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बलू निषाद। आप हैं रामगढ़ छत्तीसगढ़ से। आशय नगर डबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से अनिल मावले, सुनील मावले और मानस मावले। वाटिंडा रोड मंडी डवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। पटेल नगर मौलौट से है डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया। विजय सिंह मोहबिया, कविता मोहबिया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से और तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिशनलाल विश्वकर्मा, मीरादेव विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, इमरान खान और इरफान खान और नरोत्तम गौर, प्रियांशु गौर और यश गौर। आप उदयपुर से कुप्टी से निवास महाराष्ट्र से संकेत सक्ट लिखा आपने, और नंदा सक्ट और रामदास सक्ट। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और तेलंगाना भुंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला ने

मेहरा और अहमद आवासी, आनंद राज सागर, तुल्यता सागर और चंद खेर आप हैं। अच्छा अहमद चंद खेरा अहमद आवासी। आइए सामिन अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये नगमा, शगुन फिल्म से नगमा निगार साहिर मौसीकार हैं खयाम, पसंद आप दोस्तों की। भाटापारा से हरमिंदर चावला, सोन जोशी और शिव कुमार शर्मा। सब्जी मंडी बुल्डाना से ये है शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुजू बाबा। चमनपुर उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रिसा खातून। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा। और नूरमहल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तलह जहानाज और फरहत जहानाज। बुरवाक के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा और बीबी अवीरा। पुराना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया और पोता शिव बाबू चौरसिया। टोरवाल जिला नौशहर पंजाब से गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी ठांडी और डॉक्टर प्रियंका ठांडी। और यह है राधे, अच्छा फजल का पंजाब से भूषण खेरा, विशु खेरा और विशाल खेरा। हिपरसगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सारा बानो शेख और करिश्मा शेख। सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का यह नगमा, फिल्म है शगुन।

मामलवाड़ी महाराष्ट्र से स्वपन ताड़े, वसंत राव भोजने और निवृत्ति अड़ोकर। चिरमरी कुर्सिया कलाड़ी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह ने सुनना चाहा इस नगमे को। और आप हैं पटियाली रोड गंज डुंडवारा से मखलिन कुरैशी, नुसरत बेगम और बीबी अरीबा हबीबा। अमीर खुसरू रोड गंज डुंडवारा से भुवन प्रकाश गौतम, डॉ दबीर हसन और शबनम अनवार। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरैन अंसारी। एडवोकेट नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से और इसे पसंद किया। अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह और राकेश कुमार, आप हैं जमशेदपुर से। अजमेर शरीफ राजस्थान से गुन्नाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں۔
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता किया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
4: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है

0: इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
1: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है, और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
0: जी।
1: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना
0: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुबल जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला, जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
0: जी,
2: पिछले चुनाव से पहले आए थे, और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया, और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है, उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
0: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के एमए भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे, और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की, जिसके वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बात, जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स गोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
0: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
0: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, April 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं तक सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
0: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
0: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़ें, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
0: मैं किया जी से अगला

0: सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
1: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम लोग पीछे जा रहे थे। तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बैनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है, वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है, हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया है। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा, ये जो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूंग जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
0: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अरुणा जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
0: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाले थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिये, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है, ये चीजों पर एक रोक लगेगी। जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की, छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार पुलिस कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे कलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसपे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
0: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधी से भी कम है, फिर भी तृणमूल

0: कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बैनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
1: देखिए, ममता बैनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बैनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
0: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है, पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बांग्ला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
0: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और केया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: सामेन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। वक्त हो चुका है कवालियों का, तो लीजिए सुनिए जाफर हुसैन बदायूनी कवाल और साथियों से कवाली।

और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज दो में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकत दारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की पांचवी मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तहत सिफर बर्दाश्त के उसूल का इआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाइख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मुआशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाइख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बरादरियां पूरा एतमाद हों और आफात के वक्त हर एक जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क की मुसल्लह अफवाज, मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में कल कोलकाता में मुनक्किदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। आज सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वुजरा और बीजेपी के जेर इख्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तमिलनाडु में तमिजागा वेत्री काजागम TVK के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल कल TVK के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से ये उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि CPI, CPIM, VCK और IUML ने TVK को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही ये इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। TVK के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, कांग्रेस के 5 जबकि VCK, CPI और CPIM नीज IUML के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। TVK के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पटन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीर जी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया। रियासत के जरिए मुनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अम्बाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को

आमीन। अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम को फिल्म आग में। लीजिए सुनिए तिलक महमूद का गाया हुआ यह नगमा फिल्म मदहोश से। नगमा निगार है राजा मेहदी अली खान, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने, और इस नगमे के साथ ही आज का आखिरी शब प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए अब इजाजत।

0: का प्रोग्राम आखिरी शब्द यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। शब्द के 12:50 हो चुके हैं, अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है, अब आप फुरकान खान से खबरें सुनिए। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल कहा कि मुल्क की बाइख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मुआशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।

अब खबरें तफसील से। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकत दारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की पांचवीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तहत सिफर बर्दाश्त के उसूल का इआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल कहा कि मुल्क की बाइख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मुआशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाइख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हर एक जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क की मुसल्ला फौज, मकामी बरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में कल कोलकाता में मुनक़िदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। आज सुबह सरकार की अलाबर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वुजरा और बीजेपी के जेर क्यादत रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि यह तकरीब राबिंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तमिलनाडु में तमिजगा वेत्री काजागम TVK KC जोसफ विजय को आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल कल TVK के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आरलेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से यह उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि CPI, CPIM, VCK और IUML ने TVK को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। TVK के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, कांग्रेस के 5 जबकि VCK, CPI और CPIM, नीज IUML के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। TVK के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पटन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मुनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मुनशियात की लत लगने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मुनशियात की लानत इस हद तक पहुंच चुकी है कि जहां मरकजी हुकूमत की मुदाखलत जरूरी हो सकती है।

0: प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने तीन दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सुझो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद महल का ये गीत, आवाज यशुदास की।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म आनंद में, और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मधुमती से।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद

0: समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारकुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony

0: अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। और लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एड्डापाडी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानी स्वामी

0: उन्होंने ये बात भी कही कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एडपड्डी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. The Indian Union Muslim League, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Nadu.

वाकई बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिंदगी की राह में जब हम इतनी दूर चले आते हैं, इतना लंबा वक्त जो है तय करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हमारे साथ खड़ा हो हर लम्हों में, हर परेशानियों में, हर खूबसूरत मोड़ पर, हर दुख के उस मोड़ पर भी वो एक छांव की तरह हो। ऐसा ही साथ हर किसी को मिले, ये तो दिल से दुआ जो होती है वो सबके लिए ही होती है। कहते हैं ना कि हम सफर ऐसा चुनना चाहिए कि जो सिर्फ रास्ता ना दिखाए बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने में आपका पूरा पूरा साथ निभाए। कहते हैं कि हम सफर वो है जो हर मोड़ पर साथ निभाता है। बहुत ही खूबसूरत ये गजल आप सुन रहे थे, आवाज जगजीत सिंह की। आइए सुनते हैं गजल गीत के इस प्रोग्राम के तहत ओला मलिक की आवाज में ये दूसरी गजल।

प्रोग्राम गजल गीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: چشم حبس یہ۔
1: غزل گیت کا پروگرام یہیں سمپن کر رہے ہیں، آپ سن رہے تھے یہ خوبصورت غزل مہدی حسن کی آواز میں۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
2: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रात भर ईरानी सेना के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमरीकी सेना ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में उस युद्ध विराम का सवाल खड़ा कर दिया है जिसके बारे में अमरीका अब भी प्रभावी होने का दावा करता रहा है। अमरीका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान की विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुने येल्ला वेंकटेश्वरा राव का मृदंगम वादन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना येल्ला वेंकट स्वरा राव का मृदंगम वादन। गायन था मदिरी मंगलम रामा चंद्रन का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी लेंगे योग पवन मुक्त आसन और सेतुबंध आसन की। इसके बाद आप सुनेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी हम आपके लिए प्रसारित करेंगे सुबह 5:30 पर। 6:10 पर आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज का विषय है धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा। रामचरित मानस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 पर। इसके अलावा 7:10 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमृता दत्ता के गाए कुछ भजन। गीतो भरी गुड मॉर्निंग ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानेंगे थैलेसीमिया डे के बारे में। 9:15 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरती आकाश मिट्टी दी महक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम सवरस का समय रहेगा सुबह 11:10 पर। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन। महिला कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 1:10 पर। आज की फिल्म है हरिनामा हरे कृष्णा। इसके अलावा 2:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं तलत महमूद, ब्रज माधुरी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:03। कार्यक्रम बोलती कहानियां, इसका प्रसारण समय रहेगा 3:30 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो आपको मनोरंजन तो करेंगे ही साथ में ज्ञानवर्धक भी हैं।

अर्जन हर को बिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया।